0: Data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
1: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
2: बवाल इस बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
3: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
5: भाई, निकाल माइक।
6: भाई भाई के प्यार कितना सुंदर।
7: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
8: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
9: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.

0: is Leica Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग।
0: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
4: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
5: Backed for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
7: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
8: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
0: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
0: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
0: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
1: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
0: in Dubai.
2: Are we there yet?
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: But how? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
3: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
8: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।

हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नान हुक्मे जे बुझे।

ना भी जानिए नाल चले सब कोई चंगा ना और खाए के जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता बात ना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

वै मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

आद अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कछ

0: महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। Alexa पे बोलो प्ले Like a Gold और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles।

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
1: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
2: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: Mega blockbuster Dhurandhar. Mega blockbuster Dhurandhar. 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410 दैट्स 8574-8410
5: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
7: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: Look, there's a snail! And its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
9: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal, too. So book them an appointment at Specsavers today, for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
8: Conditions apply. See online for details.
7: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows.
10: Hi, मैं हूँ अश्विनी हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए

0: and fix those drips and drops.
1: And take shorter showers, yeah?
0: Because when we work together, it all adds up.
2: So come on, you lot, search Let's Save Water.
3: Ye hai.
4: Like a gold.
3: Like a gold.
5: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
6: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
5: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
7: Dad.
8: What's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: 073-00-9988-23 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: गेट रेडी यूके. स्नेल ग्रोवर इज कमिंग लाइव विद गुत्ती, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, रिंकू बाबी एंड मोर सरप्राइजेस ऑन द नाइट.
10: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
10: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
5: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network. Gajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Gajal's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Gajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
13: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
14: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
13: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
15: बी पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक ग्रैंड ओपनिंग.
16: एक्सपीरियंस द न्यूली इनॉग्रेटेड BAPS स्वामीनारायण मंदिर इन पेरिस, अ वंस इन अ लाइफ टाइम स्पिरिचुअल जर्नी.
15: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
16: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
15: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Gold Breakfast with Kajal.

0: इज लाइक अ गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 02087828833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Daniel Prime Location
2: High Appreciation
3: in Dubai
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टैक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 आवर लाइन
5: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 02084260678
7: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
8: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
1: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
1: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
3: सप्टेम्बर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
4: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने लग्ने कुवारा हो छो।
5: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो ने खोटा ओगवानू बंद करो।
3: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जानमा। हवे राइसली, पॉटर्स बार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटनमा। टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आजे ज कॉल करो मंजूने ऑन 07931534270। नाटक नुं नाम याद राखजो,
6: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
7: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2.
6: उसने मुझे छुआ, पर अपनाया नहीं।
8: तो फिर
7: releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड। रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे।
9: प्रश्न ये भैया आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, Do you love me?
10: तो क्या कहा आपने?
9: अरे बरसों से तो कहता आया I love you, I love you। हर दिन हर पल यही कहूँ मैं I love you।

0: Gargels Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Gargels Couture on 159 The Broadway Southall and 47 Green Lane Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Gargels Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
2: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. पूरी एंड आमरस और मिल्क शेक फुल टेस्ट इतना प्योर हो जाए हैप्पी सोल।
3: मैंगो सीजन हैज अराइव्ड यर आल्सो विद जैमिन्स मैंगो पल्प। नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स, ओनली प्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैंगोस।
2: जैमिन फूड्स मैंगो पल्प अवेलेबल नाउ।
4: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂર નો આનંદ માણો। ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના મંત્રા હોલિડેઝ। કોલ કરો 02037736333। મંત્રા હોલિડેઝ, વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા।
5: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
6: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 0192322774। बुक योर टेबल टुडे।
3: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
1: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410, दैट्स 8574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापूजी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027193 4.
5: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
5: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
5: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
5: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 Our line.
4: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
5: 0730998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 0730998823
6: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स कैफे caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
7: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
9: कॉन्सलो अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास
10: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी
11: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT कॉल करे 0748768785
12: 10 डेज साउथ अफ्रीका एवरी मंथ फ्रॉम नवंबर टू मार्च बुक बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ एंड गेट 200 ऑफ विजिट sonatours.co.uk और कॉल 0208-951-0111.
13: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better. This is Leica Gold.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel at all protected.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
5: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: होशियार।
1: गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका, स्वागत है मनोरंजन की दुनिया में। हैप्पी ट्यूसडे, हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी श्रावण मास एंड हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी संगीत। भाई एक भूल सुधार करें, वो मिडलैंड में टेम्परेचर 23 नहीं, 30 भी नहीं, 28 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है आज का। आमतौर पर जो लंदन में टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उससे एक आध डिग्री कम होता है, लेकिन आज वहां ज्यादा है। सामना करेंगे साहब, घबराइएगा नहीं, मैं हूं ना मैं ऊपर बात करूंगा। और मौसम से डरना नहीं, हालांकि थर्सडे को बार बार याद दिलाया जा रहा है कि टेम्परेचर 36 डिग्री तक जा सकता है, जाए पर लौट करना आए वही रह जाए। चलिए साहब, बैक टू बैक संगीत की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का आगाज कुछ इस तरह से होता है, बता दूं, माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून विद दिस मनोरंजन प्रोग्राम।
2: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: Travel Hub.
3: At all protected.
2: Leica. This is Leica.
1: लीजिए साहब, ये गीत और डायरी से शायरी आपके नाम करते हैं। आप बहुत प्यारे श्रोता हैं, बहुत सारे श्रोता हैं। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आपका मिलना और हमसे मिलना, आप किसको नसीब होते हैं?
5: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे

0: तो साहब दो गीत हमने परोस दिए आपको, बैक टू बैक संगीत से शुरुआत होती है किसी भी कार्यक्रम की, और आपने जो दो गीत सुने भाई, ये मेरा हेडफोन जो है, क्या कहते हैं ये, अरे चुप कर जा यार, सीटियां मारता है। अब मैं कोई लड़की तो हूं जो आप मुझे छेड़ रहे हैं, नहीं ये हेडफोन जो है, हेलो हेलो 1 2 4 1 2 4, देखो फिर सीटी मार रहा है, 1 2 4 में ये 3 कहां गया, माइक्रोफोन भी लीक कर रहा है, 3 कहां गया भाई, हेडफोन भी लीक कर रहा है, माइक्रोफोन भी लीक कर रहा है, सारे फोन लीक कर रहे हैं। शुरू हो चुका है मनोरंजन प्रोग्राम, और भाई दो गीत जो सुनवाए हमने आपको आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए, जो पहला गीत था आप आए बाहर आई, और ये बात भाई हमारे श्रोता मुझे कह रहे हैं सर आंखों पे, भाई आपका ये स्वागतम, हिना कहती है गुड मॉर्निंग रवि जी आप पधार गए हैं, अच्छा लगता है, पम्मी कहते हैं साहब आप आते हैं ना तो दिन शुरू होता है, यू आर ए फैमिली एंड एवरीवन इज इन द वर्ल्ड्स, थैंक यू फॉर ए गुड प्रोग्राम, बेस्ट विशेज पम्मी। स्लाव से भाई आपके संदेश मिलते रहते हैं। महेंद्र पटेल क्रॉयडन में, क्या मुद्रा आपने तस्वीर में भेजी है, बहुत अच्छा लगा आपका संदेश। और नाजिया शकील आप भी भाई स्वागतम, आपका जो है वो सर आंखों पर खुशामदीद, थैंक यू वेरी मच, कहती हैं हैव ए नाइस ट्यूसडे, हैव ए नाइस एवरीडे, हमारी ओर से आपके लिए थैंक यू वेरी मच भाई। एक के बाद एक जो संदेश आके चिपकते जाते, कई बार मैं सारे एक्नॉलेज नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप समझते हैं थोड़ी सी व्यस्तता रहती है यहाँ स्टूडियो में। भाई आज वो खबरें आपको हम 10:30 बजे सुनवाएंगे, और फिर चिंतन होगा थॉट फॉर द डे 11 बजे की खबरों के बाद, और भाई दोपहर बाद 1 बजे तक गीतों का संगीत का सिलसिला जारी रहेगा लाइका रेडियो नेटवर्क के, लाइका गोल्ड और भाई लाइका रेडियो मिडलैंड में जो है वो आपका साथ निभाएगा रवि शर्मा इस पर। तो साहब हो जाए पाउंड का रेट,
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं, अच्छा रेट चल रहा है, पैसे भिजवाइए अपनों को, भारत में अगर पैसे भिजवाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 पाउंड के बदले 128 रुपये और 45 पैसे दे रहे हैं, 128.45 रुपीज। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच, टीज एंड सीज अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
0: और लीजिए साहब संदेशों का आना लगातार जारी है, सत्यनारायण सैनी फ्रॉम इंडिया कहते हैं रवि शर्मा जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, ए भाई आपके यहाँ तो वेरी गुड आफ्टरनून है। हाँ सत्यनारायण सैनी जी आपको गुड आफ्टरनून, आपकी ओर से हमें गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा संदेश भिजवाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि भाई आप हमारे साथ जुड़े हैं भारत से, और लोगों को भी जोड़िए ना, और लोगों को भी हमारे कार्यक्रमों के बारे में बताइए और उन्हें सुनवाइए। वैसे काफ़ी लोग सुनते हैं हिंदुस्तान में हमें, इसके अलावा वर्ल्ड भर में, ऑस्ट्रेलिया में सुनते हैं, अमेरिका में सुनते हैं, हालांकि टाइम के डिफरेंस के कारण कहीं कहीं वो रिकॉर्डिंग या बैक उस पर जाकर के आर्काइव से निकाल के सुनते हैं, पर सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच।
2: ये है Like a Gold.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक,
2: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
1: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमिंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन, डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947। Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
3: In Dubai.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 8574840। साफ।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at Quality Food branches.
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
4: Happy Shivratri. भाई वैसे बता दूं आपको कि शिवरात्रि हर महीने में आती है. कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को प्रदोष व्रत यानी ये शिव जी का दिन होता है. लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि बड़ी स्पेशल होती है. लोग कहां कहां से जल ला करके अपने नगर, अपने गांव, अपने शहर के शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं और लाते भी हैं. कांधे पर उठा करके कावड़ बना करके दो घड़ों में बिल्कुल साहब वो, और उसको पवित्रता बनाए रखने के लिए जमीन पर नहीं रखते, वो कांधे पर ही रहेगी. मुझे याद है भाई, मैं स्वयं तो कभी कांवड़ लेके नहीं आया, लेकिन जो लोग कांवड़ लेके गुजरते थे हमारे शहर से या हमारे शहर में आते थे, और अगर वो थके वो हों, बहुत ज़्यादा थके हों, तो थोड़ी देर के लिए कांवड़ हम उनसे लेकर के उन्हें आराम के लिए समय देते थे. दिन और भाई उनका जो रहन सहन यानी यात्रा, उनकी खान पान, सब कुछ इतना पवित्र और इतना संयमित होता. संयम में बंधे रहते हैं. अपनी अपनी आस्था है, अपना विश्वास है. ओम नमः शिवाय, इसका अर्थ है मैं अपने भीतर बसे शिव के लिए प्रणाम करता हूँ. मैं आपके भीतर निवास करने वाले भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ. शिवाय, शिव के लिए नमस्कार. गणेशाय नमः, गणेश जी के लिए नमस्कार. संस्कृत में ये जो आय लगता है ना, इसका मतलब के लिए होता है. रामाय नमः, राम के लिए नमः.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम में। भाई मुझे संदेश आ रहे हैं, एक तो सुखी पूछ रहे हैं हाउ आर यू रवि जी, सुखी जी आप हैं सुखी मैं हूँ दुखी। नहीं बिल्कुल नहीं, आपका संदेश पाकर मैं सुखी हो गया, थैंक यू वेरी मच। आप कहते हैं कि मैं 3 times कांवड़ लेके आया, भाई बड़ी तपस्या है। देखो कहाँ कुछ लोग जाते हैं हरिद्वार और उससे भी आगे कुछ लोग गंगोत्री तक पहुँचते हैं, तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र पावन जल लेकर के वहाँ से फिर पैदल चल के आते हैं, कई कई दिन का सफ़र हो जाता है। लेकिन यात्रा में भाई पहले वो उत्तराखंड है और फिर उत्तर प्रदेश है, तो सुविधाएं इतनी बनाई हैं इस बार क्योंकि योगी जी जो बड़ी व्यवस्था देखते हैं स्वयं, और कहीं कहीं तो भाई हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं उन तपस्वियों पर जो कांवड़ लेकर के अपने नगर या अपने शहर या अपने उस तीर्थ स्थान पर लौट रहे हैं जहाँ वो भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। बहुत अच्छी तपस्या सुखी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। प्रतिभा कहती है रवि जी जिन्होंने अगर टेलीविजन पर या रेडियो पर न सुना हो तो बता दें कि कल सूर्य ग्रहण है, नंगी आंखों से सूरज की ओर ना देखें, ब्लाइंडनेस हो सकती है। क्या बात है भाई, ये सूर्य ग्रहण से जुड़ी एक खबर हमारे जो है प्रमोद कैट साहब हाउंसलो मंदिर से सूचना भिजवा रहे हैं कि रवि जी सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो कि कल है 12 अगस्त को, तो हम अपने मंदिर को बंद रखेंगे। उस समय सभी कार्य भाई लोग रोक करके बस ध्यान दान ये इस तरह की धार्मिक कार्य करते हैं, तो मंदिर शाम 6 से 8 बजे के बीच लक्ष्मी नारायण मंदिर 60 Neville Close में जो स्थित है हाउंसलो में वो बंद रहेगा। बाकी मंदिरों से पूछ लीजिएगा भाई, उनकी कार्यक्रम 6 से 8 बजे के बीच बंद इसलिए रहेगा क्योंकि ड्यू टू रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस एंड गाइडलाइंस रिगार्डिंग द एक्लिप्स द टेंपल ओपनिंग आवर्स फॉर 12th August विल बी खुलेंगे 12 अगस्त को सुबह 8 बजे मंदिर खुलेगा नियमित रूप से और 12 अगस्त को शाम 5:30 बजे बंद हो जाएगा। आमतौर पर शाम 8 बजे तक खुला रहता है लेकिन 5:30 बजे कल बुधवार को 12 अगस्त को ये प्रमोद कैट जी सूचित कर रहे हैं। और भाई आप जानना चाहेंगे कि कल सूर्य ग्रहण है तो किन किन क्षेत्रों में इसका असर होगा। कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, कुछ इलाकों में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जबकि कुछ जगहों पर ये आंशिक ग्रहण होगा, जो है पूरा नहीं होगा। अगर आप इसे सीधे न भी देख पाए तब भी दुनिया भर से इसकी शानदार तस्वीरें देखने के लिए भाई तैयार रहिए, वो मीडिया के माध्यम से पहुंचेंगी। ये एक ऐसी घटना है आकाश में जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और सूर्य की जो है आंशिक या पूरी रोशनी को धरती तक पहुँचने से रोक देता है। सूर्य ग्रहण कई प्रकार के होते हैं। अब ये बता दें आपको कि भाई दुनिया में आप कौन सी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ उस तरह का सूर्य ग्रहण होगा, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है आपके इलाके से, और इस तरह से भाई वो कभी कभी सूर्य ग्रहण में सूर्य का सबसे भारी वायुमंडल दिखाई देता है, कभी वलयाकार तो कभी सूर्य की चमक डिस्क जैसी दिखाई पड़ती है। सूर्य ग्रहण पूर्ण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। कल तो काफी कुछ होने वाला है भाई, आकाश में कई ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनके बारे में हम विस्तार से कल ही बताएंगे। चंद्रमा सूर्य की पूरी तरह गोलाकार जैसे गोला सा बनता है ना उस सतह को ढक लेता है और एक लकीर सी चारों तरफ नजर आती है सूर्य की, बाकी सूर्य पूरी तरह से ढके जाने से आसमान में वैसा अंधेरा हो जाता है जैसा सुबह होने से पहले या शाम ढलने के समय होता है। तो कल सूर्य ग्रहण है, समय जैसा मैंने बताया कि शाम के 6 से 8 बजे के बीच जो है यहाँ बताया जा रहा है कि होगा, तो बाकी कल और इसके बारे में सूचना देंगे। आज शिवरात्रि की बात कर रहे हैं हम और आज के दिन के साथ जो और भी खबरें जुड़ रही हैं भाई उनका देखते हैं आज क्या क्या समाचार हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। पाकिस्तान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच मक्का समझौते पर बातचीत हुई है। अमेरिकी कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। अदानी पर चल रहा आपराधिक केस खत्म हो गया है। गौतम अदानी। आयरलैंड को हराकर अफगानिस्तान ने किया 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई। और कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 132 हो गई है। वहां मुल्क में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। विस्तार से खबरें। सबसे पहली खबर ये, नेतन्याहू के गाजा पीस प्लान ठुकराने पर पहली बार डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। विस्तार से सुनिए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान को खारिज कर दिया था। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस पर रिएक्ट करेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में प्रेस से कहा कि वो नेतन्याहू के रुख पर अपना जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपना जवाब वहां पोस्ट करूंगा, मेरे पास एक अच्छा जवाब है। ट्रंप ने इस दौरान यह भी कहा कि नेतन्याहू के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। रूस के साथ जारी युद्ध में रात भर हमलों में यूक्रेन में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों जख्मी हुए हैं। यूक्रेन में जापोरिया के एक इलाकाई गवर्नर के मुताबिक इलाके में रूसी हमले में 6 लोगों की मौत हुई है, 19 जख्मी हुए हैं। भारत से आने वाली खबरों में, पूर्व शिक्षा मंत्री भारत के धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान दिया है। बयान का यूं कहिए कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर आज एक तीखा हमला बोला है। हाल ही में भाई वो जो स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, उनके दबाव के कारण धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब धर्मेंद्र प्रधान सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की भलाई, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को लेकर के कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही है उनके नाम पर। राहुल गांधी के पास सच नहीं है। आदतन झूठ बोलने वाले नेता प्रतिपक्ष को यानी अपोजिशन को न संसद में आते हैं न जवाब सुनते हैं। इन्हें तो बस अपना झूठ फैला करके घड़ियालों का आंसू बहाना है। ये बयान पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। पश्चिमी बंगाल से एक खबर आई है। पश्चिमी बंगाल भाई भारत में जो बंगाल है, सीएम शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। शुभेंदु अधिकारी खराब मौसम के चलते आज मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट में उनके हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। बताया जा रहा है कि एहतियात के तौर पर पायलट ने हेलीकॉप्टर को कोलाघाट के खुले मैदान में उतारने का फैसला किया। दरअसल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के दमदम से हेलीकॉप्टर के जरिए पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के केशपुर के लिए रवाना हुए थे। कंगना रनौत ने भगोड़े शब्द का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी के लिए भाई कुछ ऐसे कड़े शब्द जो है बोले हैं। बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पार्लियामेंट में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मुद्दे पर चर्चा को लेकर कांग्रेस और अपोजिशन पर निशाना साधा है। उन्होंने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि स्टूडेंट प्रदर्शन के मुद्दे पर जब चर्चा हो रही है तो वो होम मिनिस्टर अमित शाह का जवाब सुनने से बच रहे हैं, पार्लियामेंट में आने से कतरा रहे हैं, या कभी कभी वो उठ के चले जाते हैं। वो कहती हैं कि यही जवाब मांग रहे थे और अब जवाब सुनने के लिए भगोड़े बने हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डीआर कांगो में इबोला के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। इबोला एक बीमारी है भाई। WHO के मुताबिक हेल्थ अफसरान जो है वो अब भी वायरस पर काबू पाने की वहां कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शन की रफ्तार बहुत तेज बनी हुई है। इस मुल्क में इबोला का मौजूद प्रकोप करीब 3 महीने पहले ही फैलना शुरू हो गया था और तेजी से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा कि डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन जवाब सुनना भी जरूरी है। सेम बात भाई जो थोड़ी देर पहले मैंने खबर सुनाई थी आपको कंगना रनौत की ओर से। इंटरनेशनल खबरों में पाकिस्तान और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच मक्का समझौते पर एक बातचीत हुई है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इजाक डार ने कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची से फोन पर बात की। इस दौरान इजाक डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हाल ही में हुए मक्का डिफेंस समझौते के जो मेन बिंदु हैं उनकी जानकारी विदेश मंत्री को दी, ईरान के विदेश मंत्री को। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान के मुताबिक बातचीत के दौरान इजाक डार ने मक्का समझौते के जो मकसद है उनके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि समझौते का उद्देश्य स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को मजबूत करना है और इलाके में शांति और सुरक्षा में भूमिका निभाना है। ईरान के कंसर्न है भाई, क्योंकि इस समझौते में शामिल है मक्का समझौते में शामिल है जो तीन देश, उनमें एक देश से ईरान की नहीं बनती है, सऊदी अरब। और एक खबर भारत के बहुत बड़े उद्योगपति के लिए, अमेरिका की एक अदालत ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ कथित सो कॉल्ड धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी से जुड़े क्रिमिनल आरोपों को परमानेंटली खारिज कर दिया है, खत्म कर दिया है। अमेरिका के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की जिला अदालत ने न्याय विभाग की ओर से दायर मामले को खारिज करने की याचिका मंजूर कर ली है। और आयरलैंड को हराकर अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में आयरलैंड को 3 विकेट से हरा दिया है और इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बेलफास्ट में कल खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की और टीम ने आयरलैंड को 40.3 ओवर में 206 रन पर ऑल आउट कर दिया। जवाब में अफगानिस्तान ने 44.5 ओवर में ही 7 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और आखिरी खबर, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हालिया फौजी संघर्ष को लेकर मुआवजे की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है ईरान, तो अमेरिका भी ईरान से उन लोगों के लिए मुआवजा मांग सकता है जो ईरान के हमलों में मारे गए या गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
3: आइए अब लौटते हैं म्यूजिक की ओर, सुनते हैं साधना सरगम की इस सुरीली आवाज को।

0: ABCD के साथ आया, यानी अंग्रेजी के साथ आया स्टूडेंट्स के लिए गीत मैं भाई बजाना चाहता था, लेकिन क्या करें समय पता नहीं कहाँ खो गया। बहुत जल्दी खबरों का वक्त होने वाला है, उससे पहले कुछ संदेश शामिल करने जरूरी है।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के रेट्स इन इंडियन करेंसी 128.88 रुपीस, पाकिस्तानी 375.24, श्रीलंकन 452.5 एंड बांग्लादेशी टके 166.97।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: गोल्ड का रुख फिर ऊपर की ओर हो गया भाई। द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 104 pounds पर ग्राम।
2: गोल्ड रेस वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स। PoojaSweets.com और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली।
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, हम लोग वक्त पर पहुँचे।
5: September महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
6: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
7: ए तमे स्त्री हो हमने ऐसे रहे पुरुष हो ना खोटा हो बोवानो बंद करो।
5: Comedy King निमेशा अने Queen of Comedy मल्लिका शाह लेने आवी रहे छे। Super Hit गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे Risley, Potter's Bar, Ilford, South London अने Luton मा। Tickets अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 0793153420। नाटक नु नाम याद रखजो।
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
10: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
12: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद, पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स। परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर। आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए। 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे, बायरन हॉल, हैरो लेजर सेंटर।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678.
13: Two businesses,
14: same town,
13: same service.
14: One appears on page one of Google,
13: the other doesn't.
14: Guess which one gets the customer?
13: The truth is brutal.
14: The first page of Google gets the business.
13: Everyone else gets what's left.
14: So here's the real question.
13: When your customers search for what you sell, do they find you?
14: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
13: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: Kajal's Couture's biggest end of season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear, and jewelry from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway Southall and 47 Green Lane Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
15: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
16: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
15: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
0: और आइए अब खबरों का रुख करते हैं और भाई खबरों में प्रधानमंत्री ने जस्टिस सेक्रेटरी से कहा है कि कुछ और ऑप्शंस तलाश करें जिनके तहत सीरियस क्रिमिनल्स को जेलों में जगह बनाने के लिए जल्दी रिहा ना किया जाए।
17: Stories this hour. The government will set out how it will keep the killers of PC Andrew Harper in prison when Parliament returns in September. Andy Burnham last night told the Justice Secretary to work through further options to ensure serious criminals are exempt from an early release scheme in England and Wales. Councils could soon be handed more powers to stop betting and vape shops opening on high streets. Andy Burnham's planning to scrap rules which restrict authorities' ability to block bookie shops across Britain. And new stores selling e-cigarettes in England will need to apply to councils. Housing Minister Sally Jameson says bold steps are needed.
18: We need a longer-term strategy to really make sure we have a full regeneration of our high streets, particularly in towns and smaller cities who have really struggled in the aftermath of COVID and that demise of in-person retail. So this is another step really on the journey to see that revitalization.
17: People in parts of Colombia are waking up to huge rescue operations following a devastating earthquake. More than 160 individuals are known to have died. We're being encouraged to take steps to stay safe as amber heat health alerts are in force for most of England. That includes drinking plenty of water and checking on the vulnerable. It's reported Donald Trump hid in a catering container as part of a plan to secretly switch planes as he left last month's NATO summit. The US president was seen boarding Air Force One in Turkey for a flight to Britain, but sources say he was moved because of a threat from Iran. Mr. Trump had told reporters at the summit about security concerns.
19: I'm number one on the kill list for Iran. I like being number one on TikTok better. But I'm number one on the list for killing.
17: And Chessington World of Adventures says it'll be reopening today after being forced to close due to a burst water main. The theme park had to turn away customers yesterday. From Sky News, I'm Kat Suave.
2: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
20: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. T's and C's apply.
2: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: Very good morning. आज के मौसम के विषय में भाई मौसम वाले कह रहे हैं कि today it will be a dry and sunny day with plenty of sunshine. और भाई बादलों की कोई खबर नहीं है कहाँ गुम हो गए हैं. ये मास जरूर श्रावण का चल रहा है लेकिन मौसम श्रावण वाला यानी सावन वाला नहीं है. A very warm day. Tonight also it will be clear and dry night with no cloud around. Maximum temperature London में 25 degree Celsius और East Midlands में और उसके आसपास के इलाकों में 28 तक जा सकता है तापमान.
11: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
21: Like a gold.
22: Manoranjan with Ravi Sharma.
21: चिंतन चिंतन
0: स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। और भाई दूसरे दौर में हम चिंतन से आपको वेलकम कहते हैं। थॉट फॉर द डे आज का विचार, अक्सर भाई हमारे श्रोता सुनते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की जन्मदिन की बधाई या उनकी पुण्यतिथि पर चर्चा करके उनकी ज़िंदगी की कोई घटना हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कहते कल आपने ऐसा नहीं किया, भाई कल समय नहीं बचा, चिंतन में ज़रूर जिक्र करते हैं। वैसे बता दें आपको कि कल एक जन्मदिन पर विचार था बड़ा अच्छा, जो हम इस कुछ सिखाता है कुछ बताता है। आज की अगर बात करें तो आज आप जानते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ का जन्मदिन पड़ता है, 11 अगस्त को 1943 में दिल्ली में जन्मे थे मुशर्रफ। मजे की बात यह है कि कल 12 अगस्त को जन्मे थे जियाउल हक जालंधर में। मतलब यह है कि भारत ने पाकिस्तान को प्रेसिडेंट्स भी दिए हैं, डिक्टेटर भी दिए हैं। भाई भारत के भी कुछ नेता जो हैं वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, जब एक ही हिंदुस्तान था उस वक्त पाकिस्तान नहीं था। लेकिन बात जिसकी हम करना चाहते हैं, कल जिनका हम जिक्र करना चाहते थे, उनके जीवन से कुछ जानना भी चाहते थे, सीखना भी चाहते थे, वो नाम सुनकर के आप चौंक जाएंगे। क्या ऐसे लोगों का भी जिक्र आप भाई कार्यक्रम में चिंतन में करते हैं? बिल्कुल जी, जहां राम की कहानी ये सुनाई जाएगी वहां रावण का जिक्र तो आएगा, और भाई उनसे ही सीखना होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों का जिक्र भी आता है जिन्होंने अपने आप को बदला, अपने आप को ऐसे रूप में स्वरूप में ढाला कि भाई लोग उनकी बुराई करते करते उनकी तारीफ भी करने लगते हैं। आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व का जिक्र करेंगे आज के चिंतन में। चिंतन।

कल 10 अगस्त को फूलन देवी का जन्म हुआ था। नाम सुना ये? कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, हमने श्री देवी सुनी है और बहुत सारी देवियां सुनी है, लेकिन फूलन देवी जरूर सुनी होंगी। फूलन देवी दस्यु सुंदरी यानी एक महिला डाकू सरदार नहीं कह लीजिए, कर उनका जन्मदिन था। और मैंने सोचा कि इनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, डाके डालना, हत्याएं करना नहीं, जीवन को बदलने का एक संदेश भी फूलन देवी से मिलता है। पर जरा सुनिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म शुभम अशुभम, भाई आपने जो अच्छे बुरे काम किए हैं ना, उनका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, आप कितना भी पश्चाताप भी कर लें। भले कर्म पीछा करता है, अपना बदला लेके रहता है। फूलन देवी का जीवन गरीबी, सामाजिक भेदभाव, हिंसा और चंबल के डाकू जीवन, डाकू जिंदगी जीते हुए और फिर आत्मसमर्पण करके पार्लियामेंट तक पहुंचने की एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी है, विवादों से भरी हुई। आज के चिंतन में शामिल कर रहे हैं हम हमारी एक पुरानी सहयोगी अनु फ्लोरा का ये भेजा आलेख। अनु स्लो में रहती है और भाई का रेडियो में कंट्रीब्यूट भी करती है। उन्होंने याद दिलाया कि आज ये प्रसंग शामिल कीजिएगा रवि जी। कल को कहा था उन्होंने, कल 10 अगस्त को जन्मदिन था फूलन देवी का। 1963 में उत्तर प्रदेश की जालौन जिले के घूरा कापुरवा गांव में वो जन्मी थी, गरीब मल्हा की बेटी। छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी गई, बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही थी गरीबी में, लेकिन बाद में वो चंबल के बिहड़ों में कैसे पहुंची और फिर 1981 के बेहमई कांड के बाद उनका नाम और उनका वो काम पूरे मुल्क में नहीं विदेशों में भी मशहूर हो गया। बेहमई एक जगह का नाम है, 20 लोगों का कत्ल हुआ था और इस घटना में फूलन देवी के रोल को लेकर के लंबे वक्त तक विवाद रहा, अटकलें भी लगाई गई, कुछ तथ्य भी सामने आए, सबके बयान अलग अलग आ रहे थे। कहते हैं फूलन देवी के साथ अन्याय हुआ जब वो छोटी थी, छोटी उम्र में उनकी शादी हुई, फिर कुछ असरदार लोगों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, कहते हैं उनका रेप हुआ और वो एक ऐसी जो मासूम लड़की गांव की थी वो एक खूंखार डाकू बन गई। और सबसे पहले उसने उसी कम्युनिटी के लोगों को अपना शिकार बनाया जिन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। और उसके बाद तो साहब एक के बाद एक कत्ल करते हुए वो डाकुओं की सरदार बन गई। चंबल के बीहड़ इलाकों में उसका नाम गूंजता था, उसका आतंक, उसका खौफ था लोगों के दिलों में, खासकर उस जाति के लोगों में जिनके लोगों को उसने चुन चुन के मारा था। फूलन देवी फिल्म भी बन चुकी है उन पर, लेकिन फिर बदलाव देखिए। 1983 में फूलन देवी ने मध्य प्रदेश में सरेंडर कर दिया, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये कैसे हुआ? बोले ये वो देश है जहां रत्नाकर नाम का कोई डाकू अगर अपने जीवन को बदलने पे आए तो महान ग्रंथों की रचना कर सकता है। उन्होंने लगभग 11 साल फिर जेल में बिताए फूलन देवी ने, और 1994 में रिहाई के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली। कहानी में यह बड़ा मोड़ आया, 1996 में वो मिर्जापुर से पार्लियामेंट की सीट के लिए चुनी गई। देखो भारत के लोग भाई इतिहास को कितनी जल्दी भुला देते हैं। चंबल के बीहड़ों से निकल करके पार्लियामेंट पहुंच गई फूलन देवी। किसने पहुंचाया? मुलायम सिंह यादव।
मुलायम सिंह यादव की पार्टी से भाई वो एमपी चुनी गई। वही मुलायम सिंह यादव जो रेप के मामले में एक लड़के के लिए कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। खैर साहब, एमपी बनी, सरकारी घर मिल गया दिल्ली में, आलीशान जिंदगी हो गई। अब वो डाकू जो बीहड़ जंगलों में भटकती थी बंदूक लेकर के लोगों को भाई डराती थी, उनकी आवाज, उनका बयान, अब वो पार्लियामेंट में बैठती थी। लेकिन समय का चक्र देखिए, 25 जुलाई 2001 को, एग्जैक्टली 25 थी या 26, आई मीन जुलाई 2001 में दिल्ली में उनकी सरकारी कोठी के बाहर ही गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में शेर सिंह राणा को गिरफ्तार किया गया, एक व्यक्ति को। बाद में अदालत ने उसको कसूरवार ठहराया और उसको भी वही जेल हुई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अच्छी जिंदगी उसे मिल तो गई, लेकिन जिंदगी छीन भी ली गई, क्योंकि उसने बहुत लोगों की जिंदगी छीनी थी। फूलन देवी, बैंडिट क्वीन, कई नाम थे उसके। अत्याचार, प्रतिरोध, अपराध, न्याय, राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों के जटिल संबंधों की कहानी है फूलन देवी। और भाई, और भी वो लोग जो अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं, ये याद रखें, अवश्यमेव भोक्तव्यम, जरूरी भुगतना पड़ता है कर्म का फल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपने जो किया है याद रखिए, आप पश्चाताप कर लें, आप माफी भी मांग लें, लेकिन कर्म का फल देर सबेर भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है, क्योंकि उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता।

0: भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा। यहीं पर स्वर्ग नरक है। गीत कैसा लगा आपको? बहुत सारे श्रोताओं ने तारीफ की है। भाई आज इसे अपने नाम कर लीजिएगा। जो जानना चाहते हैं कि ये गीत किसने गाया, तो भाई आप ही बताइए। सब कहेंगे रफी साहब की आवाज लगती है, पर ये मोहम्मद रफी की आवाज नहीं है, ये अनवर की आवाज थी। भाई अनवर यहां आए तो मैं उनको लेकर के एक थिएटर में गया। वो चाहते थे कि यहां उनका एक शो किसी थिएटर में होते। थिएटर भारत सरकार का है, नेहरू सेंटर कहते, बहुत सुंदर सांस्कृतिक केंद्र जिसमें मंच है, लाइट साउंड सारी व्यवस्थित हैं, हॉल है और पूरी तरह की व्यवस्था है। बड़ा डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फियर है वहाँ का। और वहाँ की डायरेक्टर थी उन दिनों मिसेज महतो। मैंने उनसे कहा कि मैडम आपके लिए दूसरे रफ़ी साहब हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ की बिल्कुल इतनी बढ़िया वो प्रस्तुति करते हैं ये अपने स्वर में, बस यूँ समझ लीजिए रफ़ी साहब हैं। वो इतना नाराज़ हुई, भाई कभी फिर ऐसा मत कहिएगा, कोई दूसरा रफ़ी नहीं हो सकता। उनके सामने ही, अनवर भाई के सामने, और खुद अनवर भी मान गए, कह रहा रफ़ी साहब तो रफ़ी थे, कोई दूसरा रफ़ी नहीं हो सकता। लेकिन कितना प्यार करते हैं उस कलाकार को लोग आज भी। क्या साहब, मैंने ये भी बताया था आपको कि जिस दिन रफ़ी साहब की डेथ हुई थी ना, तो मुंबई में एयरपोर्ट पर मेरे भाई मुझे लेने नहीं आए। मैं मॉरिशस से लौट रहा था शो करके, और खबर पहले भिजवा दी थी, पर मुंबई हवाई अड्डे पर मैं देर तक इंतज़ार करता रहा। फिर भाभी को फ़ोन लगाया तो भाभी ने कहा, आपको पता नहीं रफ़ी साहब की डेथ हो गई है, वो आज घर से नहीं निकल रहे, कमरा बंद करके अंदर पड़े हैं, बस पी रहे हैं, और सचमुच बच्चों की तरह रो रहे हैं। इतना प्यार करते थे रफ़ी साहब से वो। हमारे यहाँ कई स्टाफ में हैं लोग जो रफ़ी को गंधर्व का अवतार मानते हैं। कृपा तो थी उन पर प्रभु की। पर भाई गीत ये भी बहुत अच्छा, मुझे तो अनवर साहब का ये गीत जो है बहुत प्यारा लगता है, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को। आज के चिंतन में आलेख शामिल था अनु फ्लोरा का। थैंक यू अनु भाई, वो मेरी एक बड़ी प्रशंसक रही हैं, लेकिन वो खुद भी रेडियो प्रेजेंटर हैं, और अनीसा जी की तरह और कई दूसरे कलाकारों की तरह बहुत सम्मान देती हैं मुझे। पर भाई वो सुनती भी हैं और कभी कभी सुनाती भी हैं। थैंक यू अनु। रानी स्लो में रहती हैं, उन्हें भी चिंतन अच्छा लगा, कहती गाना बहुत ही प्यारा लगा। मानसी आपको भी गीत अच्छा लगा, इसे अपने नाम कर लीजिए। और ये नैना शाह लिखती हैं, ईश्वर कभी हमारे काम के आड़े नहीं आते, अच्छा या बुरा भुगतना ही पड़ता है, स्वतंत्रता दी है प्रभु ने, जो मर्जी करो पर भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा। साक्षी बनो कर्म के, कर्म के साथ लिप्त न हो, इस पर कभी फिर चिंतन करेंगे। थैंक यू नैना। फतेह पटेल साहब आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, निर्मला जी आपका संदेश मिला, थैंक यू। अरुणा एंड भूपेंद्र पटेल टोरंटो में, उल्लास महेंद्र क्रोइडन में, महेंद्र पटेल, अर्जन जी, राजीव पटेल आप भाई मिल्टन कीन्स में सुनते हैं, रागिनी नीला चौधरी पम्मी सिंह और जगदीश भूषी में, और क्या कहने आपके, देशराज बैसन साहब कहती हैं कि जेल से आने के बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996 और 1999 में उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर सीट से लोकसभा की मेंबर चुनी गई थी फूलन देवी जी, लेकिन फिर दिल्ली में उनके सरकारी घर के बाहर ही उनकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाला शेर सिंह राणा उसी कम्युनिटी से आता जिस कम्युनिटी के लोगों को फूलन देवी ने चुन चुन के मारा था। कहते हैं मैंने 1981 के उस बेहमई कांड के बदले में ये कर्म किया है। गांधी जी कहा करते थे, आई फॉर एन आई एंड हाफ द वर्ल्ड विल गो ब्लाइंड। बदले की भावना से भी भाई कर्म जो भी करोगे भुगतना तो पड़ेगा। ये था आज का चिंतन, आज का विचार। और याद दिला दूं आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं भाई, पाउंड का रेट अच्छा चल रहा है। भारत में अगर अपनों को रुपए भिजवाना चाहते हैं तो एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 128.45 रुपीस। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch.

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
5: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
4: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
6: On this week's Leica Extra podcast, we discuss astrology, truth or trap, hosted by Kush, who talks to an astrologer and palm reader.
7: Let's talk about the next generation of South Asians, because whether it's astrology, whether it's anything to do with gemstones, lucky color, lucky days, palmistry, matching charts, any of that, it's not going anywhere.
6: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Let's return to the biggest hits, back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
8: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
9: TravelHub.
8: At all protected.
6: Leica.
10: और लीजिए साहब, बैक टू बैक संगीत में पहला गीत सुनवाते हुए आपको याद दिलाते हैं एक हीरो की, जिनका आज जन्मदिन है. वैसे बता दें भाई, फिल्मी

0: सितारों के जन्मदिन और उनकी बारे में ज़्यादा जानकारी देने का बीड़ा जो है वो बाली भाई ने उठा रखा है, और बाकी लोग प्रेजेंटर्स को ये हिदायत है कि भाई वो उनके बारे में ज़्यादा ना बताएं, क्योंकि बाली भाई खोद के विस्तार से जानकारी लेके आते हैं फिल्मी सितारों के बारे में। लेकिन भाई आज इतना तो कहना पड़ेगा कि सुनील शेट्टी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। अब यह मत कहिए कौन सुनील शेट्टी, भाई थोड़े से ही शेट्टी हैं फिल्मी दुनिया में, जैसे शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी हाय हुकू वाले मंगलोर में जन्मे थे आज के दिन 1961 में। हैप्पी बर्थडे सुनील भाई। मुंबई में भाई इनका बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है सिग्नेचर।
1: ये लड़की मेरे सामने,
0: हमने वहाँ खाना खाया, बड़ी अच्छी सेवा की भाई इनके स्टाफ ने वहाँ पर।

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: कौचू बंद कर रेडियो।
2: नहीं करू कीधु ने।
1: अरे कौचू बंद कर, मैं टीवी जोऊ छे।
2: तमारे जे जोऊ होते जुओ, समझा ने। जहाँ सुधी रवि शर्मा ने न सांभळू ने त्यां सुधी रेडियो बंद नहीं करू, नहीं करू, नहीं करू।
1: एटले
2: शु? वार छोड़ीस, घर छोड़ीस, पर रवि शर्मा ने नहीं छोड़ू। ना, एटले रेडियो मां रवि शर्मा ने सांभळवानू नहीं छोड़ू।

0: क्या ले लेगी बैर बढ़ा के, दोस्ती कर ले कुछ मिल जाएगा। भाई ये जो बीन का लहरा है ना, इसको सुन करके लोगों के दिलो दिमाग में वो छवि आती है सांप की, वो फन लहराते हुए, और वो सोचते हैं कि भाई बीन की इस ध्वनि को सांप जो है ना सुनता है, मगन हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि भाई सांप के कान होते ही नहीं है, सांप के कान नहीं होते, वो नहीं सुन सकता है। अब लेकिन अगर आप उसके बिल्कुल फन के पीछे जाकर के चुटकी भी बजाएंगे तो वो मुड़ के देखेगा। और वो बीन के लहरे पर फिर झूमता कैसे है, तो आपको बता दें कि सांप का एक नाम है चक्षुश्रुवा, ये संस्कृत का शब्द है और भाई शास्त्रों में उसे चक्षुश्रुवा कहा गया है, यानी आँखों से सुनने का काम लेने वाला। जैसे ब्लाइंड लोग कानों से आँखों का काम ले लेते हैं ना, वो सुन करके पता लगा लेते हैं तो कि भाई किस तरह की छवि सामने है, और वो ध्वनि को बहुत जल्दी, संगीत के बड़े पारखी होते हैं जो ब्लाइंड लोग होते हैं। लेकिन सांप जो है वो आँखों से सुनने का काम लेता है। कैसे, जब भी आप बीन बजाएं या कोई भी आवाज़ होगी ना, वो हवा में जो लहरें पैदा करती है ध्वनि आवाज़, वो उसको पढ़ लेता है बड़ी बारीकी से। और अगर आप उसके पीछे से गुजरेंगे भी ना और वो उधर देख रहा है, तो जैसे ही आप गुजरेंगे फिर पीछे मुड़ के देखेगा वो, तो वो वायु की तरंगों को पढ़ता है, जांच लेता है, पहचान लेता है, इसलिए उसे चक्षुश्रुवा कहते हैं। अब भाई एक खबर और मैं आपके साथ साझा करना चाहता था कि भाई ये रवि नाम के लोग ना, मैं नहीं कहता बाकी लोग कह रहे, बड़े टैलेंटेड होते हैं। चलिए मैं एक रवि की बात कर रहा हूँ जो उत्तराखंड का नौजवान लड़का है, और छोटे मोटे वो आविष्कार करता रहता है। उसने एक वो उड़ने वाली कार बनाई है, यस फ्लाइंग कार, और साहब उसका टेस्ट भी बड़ा कामयाब हुआ है, और अब जैसे ही उसको लाइसेंस मिलेगा तो इसकी तो पूरी फैक्ट्रियां खड़ी हो जाएंगी। फ्लाइंग कार हुआ ये कि ये रवि जो है उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका आप जानते हैं, और भाई अपने घर से वो अगर किसी शहर जाता था तो पढ़ने के लिए भी जब जाता था, 1.5 घंटे का सफ़र पहाड़ों में से उसे करना पड़ता था। अब साहब वो छोटे मोटे आविष्कार तो कर ही रहा था, उसने एक उड़ने वाला ड्रोन की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख करके उसने उड़ने वाली कार बनाई है। 1 सीटर कार है, लेकिन उस कार ने भाई तहलका मचा दिया है हिंदुस्तान में, और वहाँ के मुख्यमंत्री जो धामी साहब हैं उन्होंने जाके उसे प्राइज दिया है, सम्मानित किया है। और अब भाई रवि जो है, देखना जब उसकी गाड़ियां दौड़ेंगी हवा में सड़कों पर नहीं, तो भाई वो करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। पर मजे की बात यह है कि ये आविष्कार किसी बड़े शहर मंगलोर बेंगलोर या बेंगलुरु मुंबई या भाई हैदराबाद से नहीं आया है, एक पहाड़ी छोटे से गांव से ये आविष्कार निकला है, और देखना कि ये पूरी दुनिया में तहलका मचाएगा। वैसे ये उड़ने वाली कारें फ्लाइंग कार जो है चाइना और अमेरिका में तो बन चुकी हैं, हिंदुस्तान भी अब उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां फ्लाइंग कार्स हवा में तैरती हुई जो है सफ़र को छोटा करेंगी। ये 1.5 घंटे में जहाँ पहुँचता था, अब इस कार से 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाता है। तो बधाई हो भाई रवि साहब, नाम कर दिया।
1: Laika Gold. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Like a Extra podcast update.
2: याद दिला दूं आपको भाई, लाइका एक्स्ट्रा में हमारा नया एपिसोड जो है पॉडकास्ट का वो आ चुका है और टाइटल है उसका इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए ट्रैप। भाई ये जो भविष्य बताने वाली बातें हैं हाथ देख करके या जन्म तिथि जान करके, तो ये इसमें कुछ सच्चाई भी है या ढकोसला है या बस पैसे बनाने का धंधा है लोगों का, इस पर बहुत गंभीर विचार विमर्श किया है खुश ने। और ज़रूर देखिएगा इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए ट्रैप ऑन आवर पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 28। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
0: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Do it for your wife, who told you to pick up bread, but instead you picked up Fred, your grandson, again. And now your daughter is calling because he missed football. That's the fourth time this month. You can wave his future career goodbye. If you don't do it for you, do it for your wife and little Freddy.
4: Book a free test today at bootshearingcare.com and take advantage of our interest-free payment plans. Boots, with you for life. T's and C's apply.
5: Ye hai.
6: Like a gold.
2: Travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on Travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit Travelhubworld.com.
7: Travelhub, best service with unbeatable price.
8: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेज। कॉन्टैक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344, 24-hour लाइन 0730099-8823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099-8823।
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
14: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
15: बीकानेर वाला।
5: परंपरा भी।
6: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इलफोर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
8: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे, जहाँ मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना। मंत्रा हॉलिडेज, कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
14: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: Hey,
16: Arey?
15: Chukke se dil de de.
16: Nahi te?
15: नहीं ते

छुपे छुपे से रहते हैं, सरेआम नहीं होते। कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास हैं, उनके नाम नहीं होते। पर मेरा नाम है भाई रवि शर्मा और कार्यक्रम का नाम है मनोरंजन। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू।

0: talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: A very good afternoon to you, money. भाई पैसा पैसा पैसा, ये हो मुसीबत ये ना हो मुसीबत, ना जी। अच्छा ये हो कैसी मुसीबत? मैं कहता हूँ जी, अगर आपको ये मुसीबत लगता है तो आप अपनी ये मुसीबत मेरे गले में डाल सकते हैं। SBI UK याद दिला रहे हैं कि भाई पैसा जो है सदुपयोग करें, अपनों को भिजवाएं, अपनों के काम आए। इस समय अच्छा रेट चल रहा है तो लेट मी टेल यू, SBI UK, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK गिविंग 128.45 रुपीज फॉर 1 pound। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। भारत में पैसे भिजवाने के लिए स्टेट बैंक की सेवाओं का भाई फायदा उठाइए। आप ये पैसे भिजवा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is brought to you by Durandar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
4: नो नीड टू फ्लाई बैक होम दिस समर हॉलिडे। कम टू अंबाला एंड ट्राई आउट आवर खोया बर्फी मेड फ्रॉम प्योर बफेलो मिल्क। यस, इट्स द सेम बर्फी यू गेट बैक होम, नाउ मेड इन इंग्लैंड विद मिल्क फ्रॉम अंबाला'स ओन हर्ड ऑफ बफेलो, ओनली फ्रॉम अंबाला। डोंट टेक आवर वर्ड फॉर इट, कम एंड टेस्ट इट फॉर फ्री दिस मंथ। नाउ ऑल्सो डूइंग द बेस्ट कड़क चाय, मसाला चाय एंड इलायची चाय, जस्ट लाइक back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Start

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574-8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: Mabster no pani puri ane pani puri no pani.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
4: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
5: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
6: अरे भाइयों, इस सप्ताह की कलाकार का नाम है गायिका लता मंगेशकर। भाई क्या कहें उन्हें, शारद पुत्री, कंठ कोकिला, कितने विशेषण आप उनके नाम के आगे लगाएंगे। और उनकी आवाज़ में इतने सारे गीत हैं, कैसे सब के सब समाएंगे। आप अगर एक के बाद एक गीत सुनते चले जाएं, महीनों गुजर जाएंगे, मन नहीं भरेगा। रवि शर्मा जो संगीतकार हैं, उनकी बनाई धुनों पर लता जी की आवाज़ इतनी जमती है साहब, तो मैं उनकी बनाई धुन पर ये गीत सुनवाता हूँ आपको।

0: कैसे लगा आपको गीत? भाई बीच में कहीं भी न रोकने का न टोकने का साहस कोई कर सकता है, इस गीत को सुनते हुए वक्त जैसे ठहर जाता है। अब आनंद जी भाई कहते हैं कि आपके रवि साहब के सारे गीत एक ही राग में गुथे होते हैं। हाँ, सुन के लगेगा आपको कि जैसे ये गीत जिस राग में बंधा है, अगर आप वो गीत सुने तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, यही सुर लगती हैं। अगर वो गीत सुने दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला वो बुझेगा क्या, बिल्कुल इसी स्टाइल में यही रिदम इस तरह से चलती है। और बहनों भाइयों गर्व है मुझे कि मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। रवि साहब की बनाई धुन ऐसी धुन है जो सीधे कानों के रास्ते दिल में उतर जाती हैं और बस जाती हैं परमानेंटली, बिना किराया दिए कब्जा कर लेती हैं दिल पर कब्जा कर लेती हैं। हर साहब ऐसे ऐसे गीत, पर रवि साहब के सारे गीत एक ही राग में हो इधर उधर ना होते हों ऐसा नहीं है, कुछ गीत ऐसे भी हैं भाई जो थोड़ा थोड़ा सा हटके हैं लेकिन फिर भी हर दौर में बड़े डटके हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: एक और संगीत रचना रवि साहब की और एक और बार आवाज लता मंगेशकर की।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और बहन भाइयों, संगीतकार रवि की रचना और लता जी की आवाज। अभी आपने गीत फिल्म आंखें से सुना। और भाई, जब भी मौका मिलेगा ना, ढूंढ ढूंढ के, या वैसे तो इसे तो ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि ये गीत तो भाई यूँ समझिए कि सामने रहता है स्क्रीन पर, कि जब चाहो सुन लो और बार बार सुन लो।
3: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
4: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: उठकर थिरकने को जी चाहता है भाई, सीट से सरकने को जी चाहता है, मेरा मतलब स्लो स्पीड के गीत तो कई सुन लिए, अब जरा रफ्तार पकड़िए। ध्यान से, फ्लोर कच्चा है।

0: by Southall Travel.
1: साउथऑल ट्रैवल का वो संदेश भाई जो हम कई दिन से आपको बार बार याद दिला रहे हैं, गौर फरमाइए। वो कह रहे हैं कि दुबई की यात्रा करने का समय आ गया क्योंकि FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रैवल टू दुबई। तो भाई जरूर यात्रा कीजिए, कॉल साउथऑल ट्रैवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है Like a Gold 10:35 AM
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 और visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
4: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
5: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
4: So where do we find something like that now?
5: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic Premium and made the way our eldest used it.
6: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
9: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: Be part of a historic grand opening.
13: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once in a lifetime spiritual journey.
12: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River cruise and a Paris city tour.
13: Departure 5th of September. Call now on 02 03 773 633.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
15: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
14: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
17: बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
18: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
19: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
20: भाई। निकाल माइक।
21: भाई माइक के पिया
19: कितना सुंदर।
20: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
21: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
1: संगीत का एक अलग सा रंग, अलग तरंग, एक हल्की सी उमंग।

0: क्या बात है खान साहब,
1: आंसू
0: हिम्मत तो रवि शर्मा साथ गा के दिखाओ ना कई जगह झटके लगेंगे, कई जगह अटके लगेंगे लेकिन साहब मैंने खान साहब के ये जब हिंदुस्तान आए तो मेरे सारे साथी गायक कलाकार जो अलका याग्निक के साथ गा चुके हैं, जो बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत कर चुके हैं, भाई खान साहब को सुनने गए तो बिल्कुल जहाँ लोग जूते उतार रहे थे ना वहाँ बैठ गए और उन लोगों ने कहा भाई आगे आइए आगे आइए, कहते नहीं हम अपनी औकात जानते, जब खान साहब को सुनने जाते हैं तो हमारी जगह यही है। याद आते मुझे अब दुनिया में नहीं है श्याम भटेजा, बहुत बड़े प्रशंसक थे इनके। एक हमारे दोस्त थे नईम अली, उन्होंने अपना नाम अली इसीलिए रखा, वो गुलाम अली खान साहब के स्टाइल में गाते थे, इसी अंदाज में इसी तरह की आवाज़ में, और भाई उनके प्रोग्राम हम करवाते थे बड़े अच्छे। मैं तो कॉम्पेयर ही करता था शोज़ को, लेकिन उनके कई शोज़ जो हैं कामयाब हुए। अब देखिए कमाल की बात है कि श्याम भटेजा भी दुनिया में नहीं है, नईम भाई भी नहीं है, एक बड़े अच्छे म्यूज़िक के ऑर्गेनाइज़र हमारे जो थे डॉक्टर तरुण वो भी नहीं है, लोग निकल लिए हैं ऊपर, ऊपर वाले ने शायद भाई कोई बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, सारे संगीत प्रेमियों को, संगीतकारों को, गायक कलाकारों को ऊपर बुला रहा है, पर यहाँ महफिल सजी है।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a gold.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी भाई अगर आप रेट नोट कर लीजिए, अगर आप पैसे भिजवाना चाहते हैं अपनों को तो एक पाउंड के बदले लैम्फाई वाले दे रहे हैं भारतीय करेंसी में 128.69 रुपीस, पाकिस्तानी 374.66 रुपीस, श्रीलंकन 451.24, बांग्लादेशी टके 166.58 एंड अफगान अफगानी 88.39।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold. बताते हुए डर लगता है। द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 104 पाउंड्स पर ग्राम।
2: गोल्ड रेस वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स, PoojaSweets.com और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली। This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colors TV.
5: I hope mission hai na hum log

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway, Southall and 47 Green Lane, Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
2: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
3: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
4: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 0779518100।
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
6: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
9: डेड्रे, लुक, इट्स द बॉटम लिज दिस टाइम स्लाइडिंग अक्रॉस देयर कार बोनेट।
10: लीव एंड बी फिलिप, they just claim confident.
9: Claim confident?
10: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
9: Deirdre? Deirdre? Come back here!
11: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
12: Like a goal. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
13: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: You're listening to Bali Brahmbert in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678.
7: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.

चेला बाबू 1977 की फिल्म है, आशा भोसले एंड किशोर कुमार इन फुल फॉर्म हियर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और आनंद बख्शी की लिरिक्स है, सुनिएगा। यार दिलदार तुझे पैसा चाहिए या क्या चाहिए,

0: से निराला।
1: मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
4: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awara Pan 2.
3: उसने मुझे छुआ, पर अपनाया नहीं।
5: तो फिर
4: releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
6: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.

0: Yes, many people say M for money and M for musibat. Lekin next, Mahmood saab kya keh rahe hain? Suniyega.
1: He says, सबसे बड़ा रुपया
2: ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that के भैया सबसे

0: Leica Gold across Greater London.
1: यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न

0: अभी आपने दो प्यारे प्यारे गाने सुने, इसके पीछे जो कहानी है वो सुनकर आपको ताज्जुब भी होगा, एंड यू विल ऑलवेज रिस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर नेम इन फ्यूचर। मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा वॉज बॉर्न टू नादिर शाह एंड सोफिया। नादिर शाह और सोफिया की बेटी मेहरुन्निसा जब छोटी थी तब से एक्टिंग शुरू कर दिया था एज बेबी चांद एंड देन बेबी नाज एंड देन उसके बाद नाजिमा। नाजिमा ने बड़े बड़े रोल्स किए और इंडस्ट्री में जानी जाती थी एज द रेजिडेंट सिस्टर ऑफ बॉलीवुड। जब भी रोल मिलता था, एक बहन का रोल मिलता था, ऑलवेज यूज टू बी अ सिस्टर्स रोल। आइदर हीरोइन की बहन बनती थी या तो हीरो की बहन बनती थी। अब देखते हैं इनके बारे में कहानी क्या है। हर ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर देखो, एक्ट्रेस शरीफा बाई। 1930s में शी वॉज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस शरीफा बाई। एंड इनकी आंटी जो थी, दैट इज फूफी, एक्ट्रेस हुस्न बानो ऑफ द 1940s। 1940s में एक्ट्रेस हुस्न बानो, शी वॉज बॉर्न इन सिंगापुर ऑन 8th of February 1919, लेकिन वो बॉम्बे आकर उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। और शी वॉज सो ब्यूटिफुल, शी ऑल्सो अपीयर्ड इन अ लक्स सोप एड इन द 1940s। जी हाँ, शी मैरिड एसपी ईरानी, अ फेमस डायरेक्टर, ASPI। एसपी ईरानी ने नाजिमा की लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल अदा किया। अभी नाजिमा की बात करें, हाई स्कूलिंग वॉज इन बॉम्बे, लेकिन बीइंग फ्रॉम ए फिल्म बैकग्राउंड, जैसे कि एक्ट्रेस शरीफा बाई एंड आंटी एक्ट्रेस हुस्न बानो, इन लोगों के कारण इनको कास्टिंग मिली एज अ बेबी रोल, बेबी आर्टिस्ट, चाइल्ड आर्टिस्ट बाय द नेम ऑफ बेबी चांद इन हर अर्ली फिल्म्स। दैट वाज ऑल थैंक्स टू एसपी ईरानी। एंड इनको देखा गया था एज बेबी चांद इन फिल्म पतीता। पतीता आपको मालूम है ना, देवानंद और उषा किरण की फिल्म, दैट वॉज अमिया चक्रवर्ती फिल्म 1953 की। तब वो 5 साल की थी पतीता फिल्म में। फिर 1954 में विराज बहू, वो फिल्म में वो 6 साल की थी। एंड उसमें बिमल रॉय की फिल्म थी, जिसको डायरेक्टर के रोल के लिए, एज अ डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, विराज बहू ही गॉट एन अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दैट। इसमें कामिनी कौशल थी, जी हाँ। एंड फिर उसके बाद देवदास, देवदास बिमल रॉय की देवदास विद दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन, वैजंती माला, इन लोग सब थे। और बेबी चांद 1955 में, अगेन गरम कोट, सिने कोऑपरेटिव प्रोडक्शन कंपनी, एक प्रोडक्शन कंपनी थी फॉर्म्ड बाय राजेंद्र सिंह बेदी, स्क्रीन प्ले उन्होंने किया था, मधुमति का स्क्रीन प्ले किया था अनुराधा फिल्म का, वो राजेंद्र सिंह बेदी। उन्होंने बलराज साहनी और गीता बाली एक्ट्रेस के साथ मिलकर ये सिने कोऑपरेटिव प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी। फिल्म नहीं चली गरम कोट, सो इसलिए उन्होंने पैकअप कर दिया। 1954 में ये फॉर्म हुई थी ये कंपनी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, डेब्यू एज अ हीरोइन। अब हीरोइन का रोल एट द एज ऑफ 10, देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड प्रिंसेस सबा 1958, एंड आई कुड नॉट फैदम दैट। आर के रहमान की फिल्म थी और कहा गया था कि शी डिड अ डेब्यू एज अ हीरोइन, बट मेरे मानने से तो आई थिंक 1961 में, व्हेन शी वाज 13 इयर्स ओल्ड, उनके फूफा जी ने उनको रोल दिलाया था उमर कैद फिल्म में ऑपोजिट सुदेश कुमार, दैट वाज बाय एसपी ईरानी। तो आई बिलीव के वो पर्टिकुलर हीरोइन का रोल जो था इनको मिला था उमर कैद इज द फर्स्ट फिल्म ऑपोजिट सुदेश कुमार, उसका एक गाना भी मैं आपको सुनाऊंगा। एंड देन एट द एज ऑफ 17 अगेन फूफा एस पी ईरानी ने उनको निशान फिल्म में शी प्लेस्ड हर ऑपोजिट संजीव कुमार 1965 में। यस, वैसे तो देखा जाए तो नाजीमा ने एक्टिंग किया था टावर हाउस में ऑपोजिट अजीत एंड शकीला व्हेन शी वाज 14 इयर्स ओल्ड। 16 साल की उम्र में शी एक्टेड एज सीमा सिंह इन अ फिल्म जिद्दी, आशा पारेख की बहन बनी थी उसमें। फिर कौसर आरा बेगम इन फिल्म गजल, गजल में सुनील दत्त की बहन बनी थी। एंड मीना कुमारी की शी वॉज आई थिंक कौसर आरा बेगम वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ नाज आरा बेगम, दैट इज मीना कुमारी। सो इट वॉजन सुनील दत्त, इट वॉज एक्चुअली मीना कुमारी। 1964 में फरियाद फिल्म, अप्रैल फूल में भी बड़ा अच्छा रोल निभाया था सायरा बानू सिस्टर। देन अ स्ट्रिंग ऑफ फिल्म, आरजू की आपने कवाली भी सुनी, डोली फिल्म में थी, आए दिन बहार के, औरत, राजा और रंक, वारिस, ऐसी सब फिल्में। लेकिन इन्होंने जितनी खूबसूरत एक्टिंग जो की थी ना, उनको वो जस्टिफिकेशन नहीं मिला, इनको हमेशा सिस्टर का रोल दिया गया। टू द एक्सटेंट दैट द हाईएस्ट फिल्म इंडस्ट्री में हाईएस्ट रेप सीन्स इन बॉलीवुड, उसमें नाजीमा थी। Why? Because there was always the villain who is interested in the heroine's younger sister, और उसकी वजह से ये scenes खड़े होते थे। Now we are gonna listen to some of the songs that were picturized on Nazima, and we're gonna remember her. At when she was, I think she was 27 years old. At 27 years old, तभी एक खबर निकली थी industry में कि she died. They said she died. So 1975 tha, and people thought that she had died, and she just disappeared after that. Lekin 1954 se 1975 tak 21 years she was so active. And meantime what had happened, she hadn't died, she got married. Family ne arrange karke diya tha marriage. She married Anshul Rahman and she went away to a Gulf country. And she had two sons, Rahmat and I'm confused about the two sons' names, but whatever it is, two sons, yeah. And her sister Zareen Banu informed the industry of her demise when she died on 11th of August 2025, 1 year ago. This is the first death anniversary of Nazima. And she was born on 25th March 1948 in Nasik, and she died in Mumbai. That was Sharifa Manzil. Sharifa Manzil, you remember, grandmother was an actress. She had made this huge building called Sharifa Manzil, and वहाँ पे she used to live with her sons when she got back from the Gulf after her husband had died. So we are listening to the story of Nazima today.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 128.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: Dad, Dad, Dad!
6: What's wrong, beta?
5: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
6: I will run down to the money exchange now.
5: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
6: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
8: Are we there yet?
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
10: Relax, I've booked the Uber already.
9: How? My roaming isn't even working yet.
10: I switched to Simzy before we left London.
9: Simzy? Since when are you the tech expert?
10: Since I decided I want a stress-free holiday.
11: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
12: T's and C's apply.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: Watford में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
14: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
13: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
14: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
3: Kajal's Couture's biggest end-of-season sale begins Saturday, the 8th of August. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture on 159 The Broadway Southall and 47 Green Lane Northwood. The biggest sale of the season starts this Saturday at Kajal's Couture. Don't miss it. From the 8th of August until stocks last. So act quick.
15: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
16: Shaam chalne lage dil mach
15: with the legendary Anup Chalota on Sunday 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.

0: book now. Visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
3: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
2: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई। फ्रॉम ब्रेथ टेकिंग वेडिंग ज्वेलरी टू द फाइनेस्ट डायमंड रिंग्स, डू कम इन एंड सी अस एट Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
5: Mega Blockbuster Dhurandhar. Mega Blockbuster Dhurandhar, 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: अगर आप फिल्म अधिकार देखोगे 1971 की फिल्म, उसमें शी वॉज एक्टिंग ऑपोजिट देव मुखर्जी एंड इट्स अ लव सॉन्ग एंड ब्यूटिफुली पिक्चराइज एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल शी लुक्स. वी आर टॉकिंग अबाउट नजीमा, आर डी बर्मन का संगीत और रमेश पंत की लिरिक्स. फिल्म अधिकार, वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ नजीमा ऑन हर फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Rafi saab ga rahe hain. This was film Nishan, Sanjeev Kumar with none other than Nazima.

0: Hold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £104.89 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colours TV.
4: I hope Major Nena hum log waqt par pahunche.
5: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai, on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
6: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
7: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
8: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
9: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208 426 0678
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
12: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सीइंग
11: डेजर्ट सफारी
12: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम
11: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे
12: तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे'ल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
13: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
14: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
15: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
14: Live on Sunday, the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
15: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
14: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
15: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: Location, location, location.
17: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
16: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
17: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
16: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
16: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
16: High appreciation.
17: In Dubai.
18: Ilford. Ab asli Indian flavors ka maza lijiye.
19: Bikaner wala.
18: परंपरा भी।
16: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, एल्फोर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
19: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
13: Across London, this is Ballybrambat on Leica Gold. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite show.

0: बस चैन हमें आ जाए जो बेचैन तबीयत हो जाए।
1: एक खूबसूरत गाना आए दिन बहार के, वी आर रिमेम्बरिंग नजीमा। नजीमा एक्चुअली डिड 45 फिल्म्स, एक्टिव फ्रॉम 1954 टू 75, और ये गाना है फिल्म आए दिन बहार के। इनको नॉमिनेशन मिला था फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, जब मनोज कुमार जी के साथ इन्होंने बेईमान फिल्म में काम किया था। फिल्म देखेंगे उसमें एक रक्षाबंधन वाला गाना बहुत बड़ा खूबसूरत गाना है उसमें। नेक्स्ट गाना जो है फिल्म डोली, शी वॉज प्लेस्ड एज द वाइफ ऑफ प्रेम चोपड़ा, सो यू कैन इमेजिन डोली फिल्म में क्या हाल हुआ होगा। महेंद्र कपूर और आशा भोसले, आज पिला दे साकी। इसमें बाद में बबीता आती है गार्डन में उसके साथ हैप्पीनेस शेयर करने के लिए। स्टार्टिंग इज अ ड्रंकन सीन, नॉट अ ड्रंकन बट इट्स प्रेम चोपड़ा एंड अ रोमांटिक सीन, अ बेडरूम सीन विद नजीमा।

0: मुझे याद है वो दिन जब मैं सनी स्टूडियोज में एक रिकॉर्डिंग था उन दिनों में, तो मैं गया था सनी स्टूडियोज में और वहाँ पे एक क्राउड जमा हो गया। तो सबसे मैंने पूछा कौन क्या क्या हो रहा है, बोले नया हीरो आया है, नया हीरो आया है। तो उसको खड़ा किया था एंड प्रेस वाले आके फोटोज खींच रहे थे और ऐसा मुश्तंडा मसल वाला, एंड ही वॉज स्टैंडिंग देयर एंड एवरीबडी वॉज गोइंग अराउंड हिम एंड लुकिंग एट हिम एंड ऑल दैट। बड़े बड़ा मस्क्यूलर लग रहा है ये बुतक, ये पता नहीं कौन सी इंडिया में कौन से प्रांत से आया हुआ है। तो किसी ने बोला कि ही इज़ फ्रॉम मैसूर स्टेट, यू नो, एंड ही इज़ फ्रॉम द साउथ, लेकिन हिंदी बोलता है, सब कुछ बोलता है। ये सब बातें हो रही थी एंड ही वॉज गेटिंग सो एम्बेरेस्ड, ही वॉज स्टैंडिंग देयर और लोग गोल गोल घूम रहे थे उसके, लेकिन ही वॉज सो स्टर्डी एंड ही वॉज सो मच इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ एंड आई रियली एडमायर दैट एंड आई वेंट एंड सेड हाई कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ही जस्ट नॉडेड एट मी। इतने सालों बाद एक फिल्म थी काला साम्राज्य, काला साम्राज्य में मैंने एक गीत गाया था, गाना हमारी लाइब्रेरी में नहीं है वो, और मैंने सुनील शेट्टी जी के साथ शूटिंग किया उस फिल्म के अंदर। एक नाइट क्लब का सीन है, आज पीने दे शराबियों को जम के शराब आज पीने दे। सो मैं डांस करते हुए आता हूँ, फिर उनसे मुलाकात होती है, हम दोनों डांस करते हैं एंड देन मैं एग्ज़िट मारता हूँ। वो काला साम्राज्य तो अच्छी दोस्ती, और इन्होंने एक बिजनेस खोला हुआ था ऑफ शर्ट्स, इट वॉज कॉल्ड मिसचीफ शर्ट्स एंड दे वर द बेस्ट शर्ट्स आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। क्योंकि आज तक मेरे पास दो पीसेस अभी भी है, जहाँ भी दुनिया में जाता हूँ मैं वो शर्ट्स लेकर जाता हूँ, क्योंकि उसको इस्त्री नहीं करनी पड़ती है, यू कांट डू आयरनिंग एंड यू जस्ट हैव टू थ्रो द शर्ट्स इन टू द बैगेज इन द लगेज एंड यू वेयर इट वेन एवर यू वॉन्ट एंड इट डजेंट क्रम्पल। सो इन्होंने जब ये फैक्ट्री बंद कर दी तब मैंने बहुत कंप्लेन की, बट ही सेड आई गॉट अ मूव अहेड बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू बिगर बिजनेसिस। उन्होंने एक नाइट क्लब भी खोल दिया, वेरी रिच मैन। हिज फादर एक्चुअली यूज टू बी अ वेटर एंड देन जैसे उडीपी ऐसे ढोसा वाली जगह जो होती है साउथ इंडियन वाली, वहाँ पे एंड देन ही ओन्ड हिज ओन बिजनेस इन इडली डोसा वाली जगह एंड उसके बाद स्टोरी कहानी वहाँ से शुरू होती है। सो एन एम्पायर दैट ही इज बिल्ट फ्रॉम अ डैड हु बिकेम द ओनर ऑफ अ बिजनेस और वहाँ से इन्होंने टेक ओवर कर लिया। एंड सुनील शेट्टी 65 टुडे, बोर्न ऑन 11th of August 1961 एंड ही इज एन एक्टर, अ प्रोड्यूसर, अ टीवी होस्ट, 100+ फिल्म्स इन्होंने की। डेब्यू थी वही फिल्म 1992 की बलवान, जी हाँ, दिव्या भारती के साथ। एंड देन वक्त हमारा है 93 में, फिर तो मोहरा 94 में, गोपी किशन 94 अगेन, दिलवाले 94, ही वॉज इन डिमांड आफ्टर दैट, बॉर्डर फिल्म 97, रेफ्यूजी, उसमें नॉमिनेशन भी मिला था इनको, अवार्ड मिला बेस्ट विलेन का फिल्म धड़कन एंड 2001 में प्यार इश्क और मोहब्बत, डेब्यू ऑफ अर्जुन रामपाल का जो डेब्यू फिल्म थी उनकी, वो फिल्म में ही वॉज द हीरो। सुनील शेट्टी जी ने बहुत सारी फिल्में की, अभी भी बहुत एक्टिव है एंड ही इज गॉट अ रेस्टोरेंट बिजनेस, से नो मोर, वी गोना विश हिम हैप्पी 65th बर्थडे विद दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। वी आर ओनली अलाउड वन सॉन्ग ऑफ 1990s, वरना मैं पूरे गाने इनके सुना देता मोहरा से लेकर एनीवे, हैप्पी बर्थडे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 128.45 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Like a Gold.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
6: Beta, you're not alone. For five generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
5: So where do we find something like that now?
6: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our elders use it.
7: From the House of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
9: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5. 757 Greens by Danube Prime Location
9: High Appreciation
10: in Dubai
11: Southall Travel 7 days a week Southall Travel 24 hours a day we're at our peak
12: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
11: Southall Travel.
12: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
11: Southall Travel can take you there.
13: Southall Travel. At all protected.
14: Start to

0: Yes, Udit Narayan and Aditya Narayan live. 90s Bollywood legend Udit Narayan performs with his son Aditya Narayan at the OVO Arena Wembley on Sunday 20th December. अभी से क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दिसंबर की कहीं छुट्टी आपने ले ली कहीं एब्रॉड जाने के लिए तो पछताओगे, इसलिए छुट्टियां मत करना उस टाइम पे. इट्स संडे 20th दिसंबर. टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. एंड नॉट ओनली दैट, we have the legend Kavita Krishnamurthy ji, and that is, she's performing live at the Royal Albert Hall on Sunday 1st of November, brought to you by Sanatan Events as a Diwali special. Tickets from the venue box office, that is Royal Albert Hall box office, exclusive radio partner Laika Radio Network.
1: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. What's your travel mantra? 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
1: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
6: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
7: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
8: Lights on, shutters up, staff ready.
7: But today's customers don't start on the high street.
8: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
7: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
8: They walk into your competitors.
7: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
8: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
10: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
9: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
9: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
10: ईमेल नाउ info@royalchai.com.

0: Ending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
1: Onslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
2: बीकानेर वाला परंपरा भी
3: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW31QT. कॉल करे 07487-687-885.
4: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
5: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocenter.org.
6: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Gold Drive with Sandy Shah. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: They certainly are, and Southall Travel is very pleased to announce that the SCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. So why don't you give them a call for the best competitive Dubai deals on 0208 574 8410. And don't forget, they are atoll protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Yeah, like a gold.
3: Like a gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208 426 0678
8: Start

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट Sunday the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
3: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
3: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
5: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escort and tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
6: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
7: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV, powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
8: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
9: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
10: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com.
11: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: લોબસ્ટર નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Like a cool. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Drive with Sandy Shah.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
5: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
4: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेज एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमेंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756194.
6: Start

0: Mabster Golgappe ate Golgappiyan da paani.
1: All Mabster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply. sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of August and get up to 400 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
3: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: To book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24-hour line.
2: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस.
3: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
4: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स. परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर. आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए. 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर.
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678.
6: 0730-009-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-009-8823.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-5748410. दैट्स 8574-8410.
8: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
9: Honslo, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
10: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
11: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्सलो, TW3-1QT. कॉल करें 0748768785.
12: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
13: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड. मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड. रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए.
14: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: बस जिन्होंने अभी भी ट्यूनिंग किया है, आप भी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। टेरिफिक ट्यूसडे मनाएंगे आप और हम शाम 7 से लेके 10 बजे तक। हाय हाय क्या बात है, सेकेंड डे ऑफ द वीक खत्म। पूछे आप सबसे कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना, होंगे ही। वीक शुरू हो गया और बस अब फटाफट हम बढ़ने आ गए। अब इस वीक को जल्दी खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ट्यूसडे भी खत्म होने में आ रहा है। सो 3 घंटे यहाँ पे मस्ती मजा इंटरेक्शन होती है। आज कंपटीशन भी है तो जरा ध्यान से सुनिएगा, कंपटीशन में आज अश्विनी क्या करने वाली है, सुनते रहिए। वैसे आप लोग सब ध्यान से सुनते हैं, हंसते गाते मुस्कुराते हुए अपनी चीज़ें बताते हुए यहाँ पे आप और हम आराम से इस म्यूजिकल फैमिली को इंजॉय करते रहते हैं विद म्यूजिक। तो क्या आज कोई सवाल पूछेगी अश्विनी? यस, थ्योरी लाई है। यस यस सर, यस मैडम, इट्स देयर। एंड घर घर की कहानी, वो जो सेगमेंट कल से मैंने शुरू किया है, उसमें भी कुछ तो भी मस्ती भरा आने वाला है। सवाल आप सबसे, टाइम टेबल स्कूल लेके चल रही हूँ आप सबको। टाइम टेबल इंडिया में हम टाइम टेबल बोलते हैं, ठीक है, यहाँ टाइम टेबल बोला जाता है। पूरी ईमानदारी से बताइएगा, स्कूल डेज में आपको टाइम टेबल जिसे कहते हैं पहाड़े कितने तक याद थे, कितने आदमी थे सांबा उसी टाइम में, कितने तक आपको आते थे? फॉर मी कॉन्फिडेंटली स्कूल डेज में 17 तक मुझे आते थे, उसके बाद में गाड़ी जो है धक्के दे दे के 20 तक पहुंचती थी। ठीक है, देखो मैं बड़ी कन्फेशन स्टाइल में ईमानदारी से सब बता रही हूँ कि 17 तक आते थे। अभी अगर पूछोगे कि टाइम टेबल आते हैं क्या, एटलीस्ट कंपेयर टू माई किड्स मेरे टाइम टेबल बहुत अच्छे होंगे, है ना? आपके यहाँ पे क्या सिचुएशन है बताओ। क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, है ना, मस्ती भरा सवाल। चलिए लाइफ थियरी के बारे में बात करेंगे कुछ ही देर बाद, एंड इसके बाद में किशोर कुमार का एक मस्ती भरा गीत है, उसके लिए तैयार हो जाइए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपीस एंड 45 पैसे। Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: कभी कभी, विच वॉज रिलीज इन 1976, उस फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में सुनाया आप सभी को ये गीत। अच्छा, मैथ्स की क्लास यहाँ पे लग चुकी है, ओके तो सभी लोग बड़ी ईमानदारी से, आई एम सीरियसली सो फॉन्ड ऑफ ऑल ऑफ यू। आप लोग इतना बढ़िया इंटरेक्शन करते ना कि हर रोज एक सवाल होता है और उस सवाल का जवाब उतना ही इंटरेस्ट लेके आप सभी करते हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी लिमिट बता रहे हैं कि उनकी लिमिट क्या थी स्कूल डेज में, पहाड़ यानी कि टाइम टेबल उन्हें कितने तक आते थे। तो कई लोगों का कहना है कि 12th तक आते थे एंड कुछ लोगों के कहना है कि 15 तक आते थे। तो 12 एंड 15 तक के जो पहाड़े हैं वो बाय हार्ट लर्न थे। तो ये लर्निंग वाली जो सिस्टम है ना, कि क्योंकि आई कम फ्रॉम इंडिया एंड 90s में हमारे, तो उस समय ऐसा था कि भाई क्वेश्चन एंड आंसर्स मगअप करते थे, लर्न करते थे और उसके बाद में लिखते थे। ये जो है कि पूरा फ्रीडम दिया है, चाहे जो लिख लो, हाँ अ या द यहाँ का वहाँ भी मिस हुआ ना तो भी मार्क्स कटते थे। आपके स्कूल में ऐसी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें थी उसके बारे में बताना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। कुछ ही देर में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही प्यारी थियोरी के बारे में, अभी नहीं कुछ ही देर में। उसके पहले आशा भोसले की आवाज़ में सावन की घटा से जरा हल्ले हल्ले आहा, यहाँ पे घोड़े के टप टप टप टप की आवाज़ आने वाली है। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड। This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
7: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
7: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Lester Miller is back.
10: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
9: Confirmed artists include Lember Husseinpuri, H-Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
10: Hosted by the team of Laika Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
11: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
12: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
13: बीकानेर वाला परंपरा भी,
14: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB। कॉल 07795181001।
15: सितंबर महीना में हसनो डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
16: तमे
15: બધા પુરુષો તો લગને લગને કુવારા હો છો.
16: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષો નામ ખોટા ઓગવવાનું બંધ કરો.
17: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈ ની જાન માં. હવે રાઇસલીપ, પોટર્સ બાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટન માં. ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 07931534270. નાટકનું નામ યાદ રાખજો.
18: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ye hai
3: Laika Gold.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 31 मिनट्स पास्ट 7, 7:31, 11th of August, ट्यूसडे, और आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। एंड द इवनिंग शो विद अश्विनी आप सुनते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम 7 से 10 बजे तक। टेरिफिक ट्यूसडे मना रहे हैं आप और हम, और सारे के सारे लोग जो हैं अपनी स्कूल की यादें ताज़ा करते हुए मुझे अपने अपने अनुभव, स्कूल डेज के जो अनुभव हैं वो सुना रहे हैं। तो चलिए अब टाइम होता है आप सभी का फेवरेट सेगमेंट, लाइफ थियरी सेगमेंट। आज कौन सी लाइफ थियरी सुनाई गई अश्विनी? द फूड थियरी। तो हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे कोई ना कोई लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे मैं उस अला फला बेकरी के सामने से निकला या गई थी एंड उस बेकरी के सुगंध ने, उस अरोमा ने मुझे उस बेकरी में खींच लिया एंड देन आई कुड सी कि तुम्हारा एक फेवरेट प्रोडक्ट वहाँ पे है, तो मैंने वहाँ पे बैठे बैठे कुछ चीज़ें खा भी ली और तुम्हारे लिए भी ले आया। बाज़ार गए तो ऐसी कोई सब्ज़ी दिख गई एंड सामने वाला इंसान कहता है ये तो तुम्हारी फेवरेट सब्ज़ी है ना, मैं ले आया। ग्रॉसरी शॉप में चले गए, वहाँ पे कुछ आपका फेवरेट दिख गया तो उठा के ले आए। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये आपको और उन मिठाइयों को कैसे जोड़ते हैं पता है? उस प्यार के द्वारा। हम सभी के जहन में प्यार एंड फूड, इट गोज़ हैंड इन हैंड, है ना। हमारे जो फेवरेट लोग होते हैं उनको ज़िंदगी में क्या क्या खाना पसंद है यह हमें पता होता है। इसीलिए तो कई बार जब हम खुश होते हैं उनकी फेवरेट डिशेस लेके जाते हैं, जब सामने वाला अपसेट होता है हमसे तब हम उनकी फेवरेट डिश उन्हें खिलाते हैं। प्यार जताने के लिए बहुत बड़े बड़े महल या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या बहुत खर्चे करना या बड़े बड़े इवेंट्स ज़रूरी नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हमारे ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, और ये छोटी खुशियाँ ही तो हैं जो रिलेशनशिप्स को और भी अच्छा बनाते हैं। फूड थियरी स्पेशली डेडिकेटेड है उन सारे लोगों के लिए जिन्हें अपने नियर एंड डियर वंस के फेवरेट फूड याद है, और जब कभी वो फूड प्रोडक्ट्स उनको कहीं दिख जाए तो वो याद से ले आते हैं, ले जाते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो दूसरों की फेवरेट मिठाइयाँ या दूसरों का फेवरेट फूड याद रखते हैं, क्या बात है, बड़े प्यारे इंसान हैं आप, अपने आप को झप्पी दे दो। एंड आप अगर वो इंसान हैं कि आपके लिए कोई आपका फेवरेट फूड लाता है तो कंग्रेचुलेशन, बड़े अच्छे लोग हैं अपने लाइफ में, उन्हें पकड़ के रखिएगा, जकड़ के रखिएगा, और कभी ये जेस्चर आप भी करते चलिए। As I said, बहुत बड़े जेस्चर्स दुनिया में करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे जेस्चर्स, जैसे कि आपने मुझे यहाँ पे WhatsApp पे मैसेज कर दिया, हाय अश्विनी, वी हैव ट्यून्ड इन योर शो, ये छोटा सा जेस्चर भी बहुत प्यारी स्माइल मेरे चेहरे पे लेके आता है। छोटी सी थियरी थी, कैसी लगी आज की थियरी ज़रूर बताइएगा। और चल रहे हैं अगले गीत की तरफ आप और हम। दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी।
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
4: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Laika Gold and Laika Radio Midlands from 1 PM to 4 PM. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
5: Do you stretch? Are you a big stretcher?
6: It's so good for you.
7: Sergey, I've got genius idea.

0: Kingfisher Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kachha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs अप्लाई।

0: This is Ash Winnie on Like a Gold.
1: Like a Gold.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 128.8 इंडियन रुपी, 375.07 पाकिस्तानी रुपी, 451.46 श्रीलंकन रुपी, 166.64 बांग्लादेशी टाका, 88.34 अफगानी, 174.69 कैनियन शिलिंग, 1.35 यूएस डॉलर, 63.49 मॉरिशन रुपए.
3: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £104.56 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: लीजिए आगे आप सभी का फेवरेट म्यूजिक. It's 48 minutes past 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. सो लाइफ थ्योरी जो आज सुनाई, दैट इज द फूड थ्योरी. इट्स अपलोडेड ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल रेडियो वाली अश्विनी. आप वहाँ पे जरूर देख सकते हैं. और रोज हर रोज जो मैं आपको थियोरीज सुनाती हूँ ऑन दिस शो, वो सारी थियोरीज अपलोडेड हैं ऑन माई इंस्टाग्राम रेडियो वाली अश्विनी. हाँ जी, तो बात चल रही थी मैथ्स के बारे में. जब गणित आता है ना, तो हम सबके गणित जरा उलट पुलट हो जाते हैं. तो कई लोग बता रहे हैं कि उन्हें, अरे बाप रे क्या बात है, इन्हें तो 25 तक आते हैं टाइम्स टेबल. ओए होए होए. हमारे यहाँ पे रूल था, माय पापा यूज्ड टू से कि हर शाम तुम सारे बच्चे जो हैं वो टाइम टेबल लिखोगे. सो माय ब्रदर यूज्ड टू से कि पापा मैं लिख देता हूँ, मैं ना दो टेबल्स जो हैं वो बड़े चाव से लिख सकता हूँ, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये दो टेबल्स लिखने के लिए. एंड माय पापा यूज्ड टू बी लाइक वेरी हैप्पी कि अरे इतना छोटा बच्चा है, 6-7 साल का, एंड ही इज़ लाइक टाइम टेबल लिखना चाहता है. तो वो 1 का टेबल लिखता था टाइम टेबल, एंड 10 का टाइम टेबल लिखता था. कई लोगों को ज्योमेट्री की थियोरी याद आ गई और कई लोग अल्जेब्रा की बात कर रहे हैं. भाई मैथ्स जो है, यस आई डू एडमिट कि मैथ्स से मैं घबराती थी. एंड या मतलब आई थिंक कभी कभी वो टीचर्स पे भी डिपेंड करता था ना, कि टीचर्स अगर बड़े अच्छे प्यारे समझदार एंड पेशेंस वाले होते हैं तो बच्चे मैथ्स से कम डरते हैं. पर कुल मिला के मैथ्स का अगर डर है तो है भाई, है ना, वो तो वो चीज़ होती है. एनीवेज, सो किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ में, अरे क्या बात है, यू विल बी हैप्पी. कामचोर फिल्म से सुना रही हूँ आप सभी को ये गीत, तुमसे बढ़कर. 1982 में ये फिल्म रिलीज हुई थी एंड इस फिल्म के सारे गीत बड़े ही प्यारे, बड़े ही अच्छे हैं. टेरिफिक ट्यूसडे में अब मैं आपको सेकेंड आवर में क्या सुनाने वाली हूँ, भाई पूरा ही टेरिफिक ट्यूसडे बन रहा है, लेकिन डेफिनेटली जो प्लेलिस्ट अपलोडेड है वो सब आपको पसंद आने वाले हैं. और सेकेंड आवर में कॉम्पिटिशन आ रहा है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. जैसे ही मैं कॉम्पिटिशन के बारे में अनाउंस करूँ तो फिर आप सुन के आंसर दे दीजिएगा, तो दो टिकट मिलेंगे आपको. काहे की कॉम्पिटिशन है, क्या है, कौन सा प्रोग्राम है, सारी की सारी डिटेल्स आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में.
0: Ashwinie, brightening up your weeknights.
1: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
5: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Koya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay. गए
7: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक,
8: तुम तो तेरे आशिक है सदियों पुरा।
7: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th August हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th August वुडमेंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
9: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
10: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। इस आवर का आगाज हमने किया था आईना फिल्म से। आई लव दिस ट्रैक, मेरी सांसों में तुम, कुमार सानू एंड आशा भोसले की आवाज़ में। आप सभी ने सुना ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में मुकद्दर का सिकंदर। दिल तो है दिल, ब्यूटिफुल ट्रैक, मेलोडियस ट्रैक एंड सेकेंड आवर में। कल से हमने एक फीचर स्टार्ट किया है नया, तो हम जनरली दो दो फीचर्स मैं आप सबके लिए प्ले करती हूँ हर आवर में, है ना। तो पहले आवर में होता है यादों की बारात, जिसमें आपको 50s के एरा का कोई गीत सुनाती हूँ, उसके बाद में हम बात करते हैं किसी लाइफ थियरी पे, ठीक है। सेकेंड आवर में इमोशन ऑफ द डे तो आएगा, लेकिन अब घर घर की कहानी, ये जो सेगमेंट मैंने शुरू किया है, तो हर रोज़ हम एक नए चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो हम हैं एशियन लोग, है ना, और हम लोग जो भी करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। प्यार, लड़ाई, तकरार, नफरत, सब कुछ ना मतलब दिल खोल के करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, नॉट सिंगिंग, मैं नागन तू सपेरा। मोस्ट ऑफ द मैरिड कपल्स, जी हाँ, कल हमने बात की थी इंडियन पेरेंट्स पे कि किस तरीके से टीवी सीरियल शुरू रहता है और मम्मी पप्पा बोल देते हैं कि बाद में फ़ोन करो, बाद में बात करेंगे। तो आज बात करेंगे एशियन कपल के बारे में, है ना। तो हर कपल में एक ऐसा इंसान होता है जिसको घर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उसको करना होता है डीक्लटर, पर एक मेंबर हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक ऐसा जो कहता है कि नहीं नहीं रहने देना यार, ये चीज़ काम में आएगी ना, क्यों फेंकना है। आपके यहाँ पे ये इंसान कौन है जो चीज़ें जल्दी से फेंकनी नहीं देता या फेंकनी नहीं देती, डीक्लटर नहीं करने देते? दैट्स द क्वेश्चन ऑफ दिस आवर। घर घर की कहानी में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत मज़ेदार आंसर्स आने वाले हैं। देखिए, ये जो सेगमेंट है ना, ये मस्ती मज़ा के लिए ही आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट किया है, तो ज़रूर बात करेंगे इसके ऊपर बस कुछ ही देर में। एंड नेक्स्ट ट्रैक किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में, कस्मे वादे, विच वॉज रिलीज इन 1978, वो गीत सुना रही हूँ। मीन वाइल कौन है जो गर्मी से सामान नहीं फेंकने देता? Seven stations, SBI UK Money Talk, One Mobile, send money app to India with competitive rates with LIGO Radio Network, UK online and via the SBI UK branch. एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपीस एंड 45 पैसे। Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch.

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स नियरली 31 मिनट्स पास्ट 8। आप लोगों ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। अच्छा, जो अभी दो गीत सुनाए ना आपको, पहला गीत जो था वो था दूसरा आदमी, विच वॉज रिलीज इन 1977, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ में, आंखों में काजल। एंड इसके बाद था छाया फिल्म से, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा। तो ये दोनों भी गीत कैसे है ना, पहला वाला गीत जो गीत है दूसरा आदमी, ये ना बड़ा ऐसे रिफ्रेशिंग वाला सॉन्ग है कि एकदम आह मस्त एनर्जी आ जाती है। जैसे अभी गर्मी में अगर आपने नारियल पानी पी लिया एंड उसके बाद में आह क्या बात है यार, रिफ्रेश लग रहा है, ऐसे वाला गीत लगता है। एंड जो दूसरा गीत सुनाया ना, इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा, इट्स लाइक कि हम कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है और फ्रिज में जाके देखते हैं कि कुछ तो मीठा कहीं पड़ा हुआ मिल जाए, और वो छोटी सी जो मिठाई अंदर रखी होगी फ्रिज में, या वन बाइट ऑफ दैट स्वीट केक हमने ले लिया, उसके बाद में हैप्पी हॉर्मोन्स जो जनरेट होते हैं ना हमारे, वो वाली फीलिंग होती है जब छाया फिल्म से ये जो गीत सुनाया, इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा। ब्यूटिफुल लवली मेलोडियस ट्रैक्स। कैसा होता है कि आप अपना काम करते करते उस काम में इतना उस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, उस चीज़ को इतना एंजॉय करते हैं कि आप ऊपर वाले को सिर्फ शुक्राना कहना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। शुक्राना, थैंक यू, इन ग्रैटिट्यूड ऊपर वाले को शुक्राना, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जिस शिद्दत से आप लोग मेरा साथ देते हैं ना हर रोज़। एंड दैट्स द रीज़न आई से लव यू ऑल, बिकॉज यू ना बहुत ही प्यारे लोग हैं। एक तो एक काम करो कि मेरी तरफ से ना खुद को झप्पी भी दे दो एंड शाबाशी भी दे दो कि आप यू तो चोजन सोल्स की, आप लोग जो हैं आप संगीत सुनते हैं, किसी के लिए कोई प्लानिंग फॉर प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई नेगेटिविटी में नहीं जाते हैं, एंड हर एक गीत पे आप लोगों की तरफ से जो फीडबैक आता है, जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि अश्विनी मज़ा आ गया यार, इन्जॉय कर रहे हैं इस गीत को, शुक्राना उस चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच। सो जो सवाल मैंने चटपटा सवाल पूछा है, न जाने कितने घरों में आज आग लग गई होगी विद दैट सवाल। मेरा सवाल ये है कि हर कपल में, चलो हर घर में, ओके, हर घर में ऐसा एक इंसान होता है जो चीज़ें बाहर फेंकने नहीं देता, डीक्लटरिंग नहीं करने देता, अरे नहीं नहीं ये चीज़ तो काम में आएगी। एंड कपल में भी, मियाँ हो बीवी हो, दोनों में से एक कोई है जो चीज़ें और सामान जल्दी फेंकने नहीं देते हैं। मज़ा तब आता है कि जब आप लोग मुझे पूछते कि अश्विनी आपके घर में क्या सीन है, तो मैं सबके किस्से कहानियाँ सुनाऊँगी, लेकिन उसके पहले इमोशन ऑफ द डे, फिर से आप लोग खुश होने वाले हो, पता है क्यों? क्योंकि लता मंगेशकर की आवाज़ में घर फिल्म से आप लोगों के लिए मैं टेरिफिक ट्यूसडे में लाई हूँ तेरे बिना जिया जाए ना। एंड इसके बाद कंपटीशन है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं तुरंत कंपटीशन की बात करूंगी।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। कूल म्यूजिक फॉर अ सुपर हॉट समर टाइम ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क। इमोशन ऑफ द डे।

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: मतलब उफ, बस यही निकल रहा है। जो तो इस गीत को सुन रहा है, खैर बैक टू बैक पहले आवर के पहले गीत से आप लोग सभी मेरा साथ दे रहे हैं। एंड सेकेंड आवर में अब एक बार मिला लेंगे घड़ियाँ, 8:39। मैंने बताया था ना आपको 35 के ऊपर थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है गिनती का। कभी याद आ जाता है तो याद आ जाता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इट्स ओके, है ना। सो इट्स 8:39। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तो कॉम्पिटिशन के लिए तैयार सारे के सारे धुरंधर, ध्यान से सुनिए। और ये ध्यान से सुनना इसलिए है क्योंकि आपको मिलेंगे 2 टिकट्स। भाई कौन से टिकट्स हैं? Laika Radio Network and soon to launch station Laika Radio Ghazal teams up with Anuj Chopra Foundation for an evening filled with ghazals and elegance featuring legendary Anoop Jalota hosted by hamari apni Anisa Nasir on Sunday 30th of August at Queen's Theatre Romford from 6 PM. 2 ticket milenge ha, to dhyan se suniye karna kya hai. Simply send the word ghazals for you to be in to win. जीतना चाहते हैं टिकट, बस मुझे गजल लिख के भेजिए एंड विनर्स टिकट्स। अरे यार क्या, कभी कभी ना ऐसे हो जाता है कि आप अटक जाते हो पढ़ते पढ़ते। विनर्स को अपने टिकट्स जो हैं वो बॉक्स ऑफिस से उठाने पड़ेंगे ऑन द इवनिंग ऑफ द शो, उन्हें वो टिकट्स वहाँ मिल जाएंगे। आपका नाम एंड नंबर अलॉन्ग विथ आपका आईडी, ठीक है? तो आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, आपका नंबर देना पड़ेगा और आपका आईडी वहाँ पे दिखाना पड़ेगा जब आप अपनी टिकट लेने जाएंगे। इफ़ यू डोंट विन इट्स ओके, मूड ऑफ मत करिएगा। यू कैन बाई टिकट्स फ्रॉम queenstheatre.co.uk, queenstheatre.co.uk. डोंट फॉरगेट द यूकीज फर्स्ट गजल्स रेडियो स्टेशन हम ला रहे हैं आपके लिए, लाइक अ रेडियो गजल्स, और ये आ रहा है जल्द जल्द जल्द, है ना। 3 बार देखो मैंने एको करके बता दिया, तो ये आ रहा है जल्द जल्द जल्द। जल्दी जल्दी मुझे लिख के भेजिए गजल्स, विनर्स को मैं देने वाली हूँ 2 टिकट। एंड अब ऐसा करते हैं कि एक और गीत सुन लेते हैं। ओह अरे यार मजा आने वाला है, बस सुनो।
3: This is Laika Gold.
4: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: एपिसोड नंबर 28 आ चुका है। इज एस्ट्रोलॉजी रियल और अ ट्रैप? द एपिसोड अनकवर्स इफ एस्ट्रोलॉजर्स एंड पाम रीडर्स हैव बीन स्कैमिंग अस। मतलब गहन डिस्कशन होने वाला है यहाँ पे। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। हमारी अपनी खुश ने इस एपिसोड को होस्ट किया है, जरूर देखिएगा एंड सुनिएगा।
3: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। This is Ash Winnie on Laika Gold.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com.
7: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
8: Taxi!
7: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
9: Chawal ho best, sab kare test, Disha Rice ka hai zamana.
4: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934
0: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
10: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा
11: द वेट इज ओवर इमरान हाशमी रिटर्न्स इन द नेक्स्ट चैप्टर of a cult classic Avarapan 2
10: usse mujhe chua par apnaya nahi to phir
11: releasing in cinemas on August the 14th for your nearest cinema listings visit Bakronia Media on Instagram
3: like a radio network proud hospitality partner Ragasan On this week's Leica Extra podcast, we discuss astrology, truth or trap, hosted by Kush, who talks to an astrologer and palm reader.
12: Let's talk about the next generation of South Asians, because whether it's astrology, whether it's anything to do with gemstones, lucky color, lucky days, palmistry, matching charts, any of that, it's not going anywhere.
3: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: वेलकम, स्वागत है आप सभी का द इवनिंग शो विद अश्विनी के लास्ट आवर में, आखिरी थर्ड आवर में। एंड इस आवर में गजल या कवाली मैं क्या सुनाने वाली। एक्चुअली जब मैंने ये बोलना स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि इतना राइम होगा, गजल या कवाली मैं क्या सुनाने वाली। अपने आप एक राइम बैठ जाता है ना और उसका टोन अपने आप सेट हो जाता है, राइट। तो इस आवर का आगाज हमने किया था लता मंगेशकर की आवाज़ में लम्हे फिल्म से, बड़ा सुपर डुपर हिट ये गीत था। एंड इसके बाद वाला गाना तो उफ, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज़ में रामपुर का लक्ष्मण, द ब्यूटिफुल द गॉर्जियस द रेखा, द रेखा नहीं, द ब्यूटिफुल द गॉर्जियस रेखा, आप सही है। एंड रणधीर कपूर, राइट, इन पे फिल्माया गया था ये गीत। भाई पक्का वाला प्रॉमिस होता है वीकडेज में 7 से 10 द इवनिंग शो विद अश्विनी में एंटरटेनमेंट है, थोड़ा सा इमोशनल कर देने वाली कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने वाली चीज़ें होती हैं और गाने तो आहा उहू उफ वाले होते हैं। सो कुल मिला के पैसा वसूल शो डेफिनेटली है आप सबके लिए। नेक्स्ट ट्रैक जो आप सबको मैं सुना रही हूँ दैट विल बी दहलीज फिल्म से। एंड उसके पहले ज़रा अनाउंस कर दे, गज़ल के विनर हैं, गज़ल का जो अभी हमने कॉन्टेस्ट किया था उसके विनर हैं हमारे कंप्यूटर ने चूज़ किया है बॉबी जे इन्हें। एंड भाई कंग्रेचुलेशंस बॉबी, आप जीतते हैं 2 टिकट। तो आपको वेन्यू पे जाकर अपने टिकट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, अपना आईडी ज़रूर लेकर जाइएगा, अपना फ़ोन नंबर भी, एनीवेज हमारे पास में भी सारी डिटेल्स रहेंगी। लेकिन यू कैन कलेक्ट योर टिकट्स एट द, आप जब क्वींस थिएटर पहुँचेंगे वहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हैं। और जिनका नंबर नहीं लगा उदास नहीं होना है, बिल्कुल £25 के टिकट्स हैं, ज़रूर क्वींस थिएटर पर जाके देखिएगा। एंड वहाँ पे आप टिकट्स बुक कर सकते हैं, साथ में हमारी प्यारी अनीसा नासिर जी एंकर रहने वाली शो की, एंड अनूप जलोटा जी के साथ में गज़ल का प्रोग्राम, मतलब इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। नेक्स्ट ट्रैक थोड़ा वॉल्यूम अप रखना है, ज़रूर रखिए।
1: Ashwini, brightening up your weeknights.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 128 इंडियन रुपी एंड 45 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 9:23। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। सो सेकेंड आवर में घर घर की कहानी, ये जो नया सेगमेंट शुरू किया, क्या बात है, आप लोगों को तो बड़ा पसंद आ गया भाई ये वाला सेगमेंट। तो मैंने पूछा कि हर घर में एक ऐसा इंसान है जो घर की चीज़ें नहीं फेंकने देता या नहीं फेंकने देती, एंड सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुझे आंसर्स मिले हैं वहाँ पे फीमेल्स कह रही हैं कि भाई मेरे बेटर हाफ जो हैं वो मुझे चीज़ें नहीं फेंकने देते, एंड सम ऑफ द मैन सैल्यूट यू यू गाइस, यू पीपल आर बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट सेइंग कि नहीं मैं हूँ वो बंदा जो चीज़ें बाहर फेंकने नहीं देता। और हमारे एक प्यारे लिसनर है जिन्होंने कहा कि मेरी मम्मी ने गराज में इतना सारा सामान भर रखा है कि हम एक फैक्ट्री खोल सकते हैं अगर इसको डीक्लटर कर दिया जाए तो। एंड हमारी प्यारी और एक लिसनर है वो कहती हैं कि भाई मेरा जितना सामान मेरे जो एक्स थे वो जब फेंक दिया करते थे तो मैं उनके पीछे लग के उनको कहती कि लाओ भाई लाओ मेरा वापस सामान ला के दो, एंड सी हाउ थिंग्स टर्न नाउ। अब उनकी बेटी उठा के उनके सामान फेंकती है तो वो कुछ नहीं करती और वो खुद मुझे बता रही थी कि अरे अश्विनी इतना मज़ा आ जाता है यार इस सब चीज़ों में, सीरियसली ना। ये जो मस्ती है ना ये इट हैपेंस लाइक, बट सरप्राइजिंगली मेन आर द वंस हु आर नॉट अलाउइंग देयर पार्टनर्स की चीज़ें बाहर फेंक हो या डिक्लटर करो। कहते हैं रहने दो ना, काम में आएंगी ये चीज़ें, अरे छोड़ो अभी मत फेंको, यू नो ऑल दिस स्टफ। आई रियली एंजॉयड दिस सेगमेंट ना। तो घर घर की कहानी में कल और एक नया क्वेश्चन आएगा, तो ये नया सेगमेंट मैंने इंट्रोड्यूस किया है सेकेंड आवर में। एंड भाई देखो, एक तो हम हैं एशियन लोग, एज आई सेड कि हर चीज़ जो है हम डंके की चोट पे करते हैं, जैसे म्यूज़िक भी जो है हम डंके की चोट पे प्ले कर रहे हैं। तो गज़ल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली वो मैं ज़रूर सुनाऊंगी, बट उसके पहले लता मंगेशकर की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा ट्रैक आपके लिए लाई हूँ। अब इस ट्रैक को सुनने के लिए वातावरण निर्मिति, एक तो मेरी हिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है मतलब एटमोसफियर कैसे बना सकते हैं कि लाइट जो है वो मध्यम कर दीजिए, वॉल्यूम मध्यम कर दीजिए, क्योंकि लता मंगेशकर की आवाज़ में रज़िया सुल्तान से सुना रही हूँ आपको ऐ दिले नादा। लता मंगेशकर इज आर्टिस्ट ऑफ द वीक, उनके गीत ऐसे भी आप सुनते हैं वैसे भी आप सुनते हैं, एंड आर्टिस्ट ऑफ द वीक में भी आप सुनने वाले हैं।
1: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Dell, Dell's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan? Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is, if you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
2: This is Ash Winnie on Leica Gold. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Dad.
5: What's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Umbala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
11: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
10: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
10: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Lyco Radio Network.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English but louder.
13: Four beers, please, garçon!
12: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
14: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Goal. Aur online suno likeagold.com pe.
15: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड।
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: वसुधैव कुटुंबकम की महान सोच को साकार करते हुए पहली बार इंग्लैंड की धरती पर आ रहा है संत संसद पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स। परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के पावन सानिध्य में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की 25वीं वर्षगांठ पर नेटवर्क 10 और 10 धर्म फाउंडेशन के साथ भारत के पूज्य संत और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक मंच पर। आइए एकता और सद्भाव के इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनिए। 14 अगस्त शाम 5 से 8 बजे बायरन हॉल हैरो लेजर सेंटर।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 0208-426-0678।
7: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewelry for one of Britain's

0: Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.83 इंडियन रुपी, 375.05 पाकिस्तानी रुपी, 451.46 श्रीलंकन रुपी, 166.68 बांग्लादेशी टाका, 88.45 अफगान अफगानी, 174.63 केनियन शिलिंग, 1.35 यूएस डॉलर, 63.55 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LIKA Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £104.56 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: चलिए टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है, जरा टाइम चेक कर लीजिए अश्विनी. सो इट्स 44 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. याद रखिए, गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विस है, तो जरूर सुनिएगा लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. एंड साथ में हमारे रिकॉर्डेड शोज भी हैं जो हमारी वेबसाइट पे अपलोड होते हैं, जरूर सुनिएगा जो भी शो आप पसंद करते हैं. गजरिया कव्वाली में क्या सुनाने वाली, तो मैं सुना रही हूँ आपको तलक अजीज, लता मंगेशकर की आवाज़ में, बाजार फिल्म से ये गज़ल. एंड उसके बाद में जो आखिरी गीत होगा इस शो का, वो होगा चलते चलते प्यार में कभी कभी. थोड़ा मस्ती भरा गीत है ना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता. आई लव दैट वर्ड, ऐसा हो जाता है. छोटी छोटी बातों का वो जो है ना फसाना बन जाता है, एक्चुअली होता है ना रिलेशनशिप में से हो जाता है. बट एनीवेज, वी आर नॉट गोइंग देयर. आज हमने ऑलरेडी कपल के बारे में क्वेश्चन पूछा था. आई होप आपके यहाँ पे सब भला चंगा है ना, क्योंकि कपल के बारे में कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा था. कल फील गुड वेंसडे मनाएंगे आप और हम साथ में. कल आप सबसे मिलने का वादा करके यहाँ से निकल रही हूँ, लेकिन उसके पहले, प्यार बहुत सुंदर चीज़ है, तो प्यार दो, प्यार लो. पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए बाबा, एंड जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए. आपके मन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं समझ सकता है तो बोल के करवा लीजिए, बताइए सामने वाले को, कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है लाइफ की, है ना. मज़ा है आज के शो में. सो आप सबकी परमिशन है, नाउ कैन आई से टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. कल ज़्यादा धूप रहने वाली है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपने आप का खूब ख्याल रखें. वेंसडे फुल ऑन मस्ती होगी यहीं पे. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.
0: लाइका गोल्ड,
2: दिस अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपने आप का खूब ख्याल रखें. वेंसडे फुल ऑन मस्ती होगी यहीं पे. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.
0: लाइका गोल्ड.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: Ghazal.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold 15th and 16th of August at 9 PM.
3: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
5: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स your travel mantra.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
8: गारंटेड.
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
8: फोन 02085748410.
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
0: Like a gold par har raat ki yahiri. Purane magar sada bahar geet.

0: Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and cinnathunevents.org. Brought to you by Cinnathun Events.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
1: Cutthroat Kekilari, Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
3: Cutthroat Kekilari.
4: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
6: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: है लाइका गोल्ड। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय 108 बेस हॉस्पिटल उरी। स्टार्ट्स 15th ऑफ अगस्त एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी।
1: आई होप मेजर नैना हम लोग वक्त पर पहुंचे।
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
3: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635. 757 Greens by Danube, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Lester Miller is back.
6: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
5: Confirmed artists include Lember Hussein Puri, H Dami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
6: Hosted by the team of Laika Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me.
9: Southall Travel, auto protected.
10: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089 22 3444 24-hour line.
11: You know, I fans shout at football matches.
12: Oh, wake up!
11: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली।

0: bringing to you the best classics all night. Like a gold on 10:35 AM.
1: September mahina ma hasan no double dhamako phari aavi rahyo chhe.
2: Tame bata purush ho to lagne kuvara ho chho.
3: E tame stri omne ase ne purusho nam khota hogovano ban karo.
1: Comedy king Nimesh Shah ane queen of comedy Mallika Shah laine aavi rahya chhe. Super hit Gujarati natak Halo Patel bhai ni jaan ma. Have Risley, Potter's Bar, Ilford, South London ane Luton ma. Tickets ane vadhu mahiti mate aaj j call karo. Manju ne on 07931534270. नाटक नु नाम याद रखो
4: पटेल भाई जन्मा।
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
7: साफो ट्रेवल Auto protected।
8: ये बवाल इस बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
9: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
10: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
11: भाई। निकाल माइक।
12: बाय बाय के प्यार कितना सुंदर।
7: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
13: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English but louder.
14: 4 beers, please, garçon.
13: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
15: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
16: Relax, I've booked the Uber already.
15: How? My roaming isn't even working yet.
16: I switched to Simsy before we left London.
15: Simsy? Since when are you the tech expert?
16: Since I decided I want a stress-free holiday.
17: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
18: T's and C's apply.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
19: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Like a Radio और Like a Gold आपकी आवाज बन सकते हैं। On air हो, online या on ground, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@lykaradio.com।
3: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
8: नजरों से कह दो जी।

प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर।